आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज दिन गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार निवेश रक्षा ऊर्जा विकास सहयोग स्वास्थ्य क्षमता निर्माण संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले

श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोरी अमोनकर के स्वरों में।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में।

0: वहीं दूसरा हमेशा के लिए प्राणों से वियुक्त हो जाता है। उनके प्रत्येक शब्द में जादू सा प्रभाव था। पाषाण को भी पिघलाने वाले उपदेशों को सुन यमपाल का अंतर्मन रो उठा। अंत में किसी ने जिज्ञासा की, प्रभु जिससे हिंसा हो चुकी हो वो क्या करे? प्रायश्चित, ऋषि धीरता से बोले, क्योंकि वही मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तभी व्यथित यमपाल ने पूछा, और प्रभु जिसकी आजीविका का साधन ही हिंसा हो तो? उसके भोलेपन पर ऋषि मुस्कुराकर बोले, वत्स, हिंसा बुरी है। जब ये बात हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है तो एक न एक दिन हिंसा स्वयं ही छूट जाती है। पर मैं बधिक हूं स्वामी, क्या करूं? यमपाल की वाणी में करुणा थी। ऋषि गंभीर वाणी में बोले, तुम अहिंसा के महत्व को समझो। माह या पक्ष में एक ही दिन सही अहिंसक बनने का अभ्यास करो और समयानुसार इसमें वृद्धि करते जाओ। संतुष्ट यमपाल ने प्रतिज्ञा ली, प्रत्येक चतुर्दशी को मैं अब प्राणीवध नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद चतुर्दशी का दिन आया, यमपाल के अहिंसक बनने का दिन। तभी राजकुमार को प्राणदंड की बात सारे शहर में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ लोगों का मत था, राजा भी कैसा दुराग्रही है, साधारण से अपराध पर प्राणदंड। पर राजा का अभिमत था, मेरा पुत्र अनुशासन भंग करे, प्रजा के समक्ष अनपेक्षित आदर्श प्रस्तुत करे, ये मैं नहीं सह सकता। सारी प्रजा इससे दुखी थी, प्रसन्न थी तो सिर्फ यमपाल की स्त्री चांडाली, क्योंकि आज प्रजा के सामने राजकुमार का वध होगा तो नियमानुसार उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उसकी झोली में आ गिरेंगे। ओह, कैसे संभाल पाऊंगी मैं उनको? और वो उस क्षण का इंतजार करने लगी जिस क्षण राजकुमार का मस्तक धूल में लूटेगा। तभी उसकी कल्पना को भंग करता हुआ यमपाल बोला, देख आज चतुर्दशी है, मेरी प्रतिज्ञा का दिन, कोई बुलाने आए तो मना कर देना। अपने स्वप्न को बिखरता देख चांडाली क्रोधित हो उठी, बोली, चांडाल होकर भी पंडितों की तरह प्रतिज्ञा करते हो तुम? अरे तुम न सही, कोई और ही आज बधिक बनेगा और तब आभूषण भी तो उसी के होंगे। तभी राजाज्ञा लेकर आए राजपुरुष बलपूर्वक उसे बद स्थान तक ले गए। यमपाल दृढ़ता से राजा के सामने जाकर बोला, महाराज क्षमा करें, मैंने आज के दिन बध न करने की प्रतिज्ञा ली है। ओह, एक बधिक ने अहिंसा व्रत लिया है, राजा कठोरता से बोला, जाओ अपना काम करो। एक एक पल गुजरता गया और फिर फांसी का वो क्षण भी गुजर गया। यमपाल के हाथ फंदे की डोर न खींच सके। राजकीय नियमानुसार निश्चित समय गुजर जाने पर उसे ही ईश्वरीय इच्छा मान पुनः बध नहीं किया जाता। राजकुमार पश्चाताप से भर उठा, लेकिन राजा क्रोध से गरज उठा, रे दुष्ट चांडाल, तूने राजाज्ञा न मान मेरी शक्ति को तौलने का दुस्साहस किया है, ले जाओ इसे और चढ़ा दो सूली पर। तभी निस्तब्धता तोड़ती अमृत बरसाती वाणी गूंज उठी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। शब्द उसी ऋषिराज के थे। वे आगे बोले, राजन ये कैसा न्याय है? यमपाल उल्लंघन नहीं अपने प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा कर रहा है, आप तो धर्म और प्रजा के रक्षक हैं, सभी को एक बार सुधार का मौका दो, प्रायश्चित से बढ़कर और कोई ईश्वरीय दंड नहीं है। राजा के नेत्र ज्ञानोदय से चमक उठे, प्रजा ने हर्षद ध्वनि की, ईश्वरीय धर्म की जय हो।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रतिज्ञा पर विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगी अनुराधा पौंडवाल।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, हरिओम शरण, किशोरी अमोनकर और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज सुनते हैं प्रतिज्ञा पर विचार।
1: ऋषिराज नगर के बाहर उद्यान में पधारे थे। सारा जनसमूह उन्हें देखने उमड़ पड़ा। उसी समूह में एक था यमपाल, राजकीय बधशाला का बधिक, जो नित्य ही सिर को धर से अलग करके मनुष्यों को यमराज के यहाँ भेजा करता था। ऋषिराज उच्च शिला पर विराजमान थे। अहिंसा के उपदेश में वे कह रहे थे, मारने और मरने वाले का अंतर तो देखो। जहाँ पहले को तो क्षण भर का आनंद मिलता है,

संगीत होगा सतीश भाटिया का। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे जैव उर्वरकों की कृषि में उपयोगिता विषय पर अवधेश उपाध्याय की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर सुनिएगा एनीमिया कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अलका सेन की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। 8:45 पर सुनेगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा सुना जा सकेगा सुबह 9:25 पर। 9:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उमा देवी गौतम के गाए कुछ लोकगीत। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में सुनेगा प्रभात्रे का ख्याल गायन आप प्रस्तुत करेंगी राग देसी। कार्यक्रम आज के कलाकार सुना जा सकेगा सुबह 11:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीतकार प्रेम धवन के बारे में। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना जा सकेगा सुबह 11:30 पर। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर कार्यक्रम में आज का विषय होगा शारीरिक सक्रियता है जरूरी। दोपहर 12:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT। 12:30 पर आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने। 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी रविंद्रनाथ टैगोर। जलवायु परिवर्तन और हमारी जिम्मेदारी विषयों पर चर्चाएं। साथ ही सुनेगा परवरिश रिश्ते नाते ज्ञान विज्ञान होम डेकोर और संजीव श्रीवास्तव की वार्ता जिसका विषय होगा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। 1:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह जिरवी के गए कुछ गजलें। 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज के गायक कलाकार होंगे बेगम परवीन सुल्ताना पंडित अजय पोहनकर और विदुषी सविता देवी। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जा सकेगा दोपहर 2:45 पर। दिन में 3:00 आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में सुनेगा अस्थमा रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर SN मेडिकल कॉलेज आगरा में प्रोफेसर एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स सुना जा सकेगा शाम 4:00। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सांधिकालीन सभा में 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। 5:30 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे शारीरिक गतिविधियों का महत्व पर चर्चा। आज का सवाल क्वेस्ट वर्ल्ड हेल्थ प्लस साथ ही सुनवाई जाएगी स्वस्थ रहिए सक्रिय रहिए जिंदा रहिए विषय पर दिव्यांश अग्रवाल से स्वस्ति जैन की बातचीत। ग्रामीण लोक कार्यक्रम में शाम 6:00 ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे मैकेनाइजेशन योजना और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर चर्चाएं। साथ ही सुनवाई जाएगी सब्जी उत्पादन हेतु पाली हाउस की उपयोगिता विषय पर डॉ ओपी राजपूत की वार्ता। लोकगीतों के अलावा बताया जाएगा मंडी भाव दी जाएगी मौसम की जानकारी। श्रोताओ ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं अनुराधा पोनवाल संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी अनुराधा पौनवाल, संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अवधेश उपाध्याय की वार्ता। विषय है जैव उर्वरकों की कृषि में उपयोगिता।
1: जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणुओं के शक्तिशाली विभेद होते हैं।

जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण द्वारा तथा मृदा फास्फेट को विलेय करके पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। भारत में आजकल ऐसे अनेक जैव उर्वरक मौजूद हैं जिनके द्वारा प्रदान पोषक तत्वों के आधार पर उनको नाइट्रोजन स्थिरक जैव उर्वरक और फास्फेट परिवर्तनीय जैव उर्वरकों में हम बांट सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरक जैव उर्वरकों का तो हमारी दलहनी फसलों और दानेदार फसलों के लिए बहुत ही महत्व है। हमारी दलहनी फसलों में जैसे मटर, अरहर, मूंग, उड़द, चना आदि में नाइट्रोजन स्थिरक जीवाणु उनकी जड़ों में सहजीवन व्यतीत करते हैं। हमारे वायुमंडल में वायु के घटकों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और पौधे इसको सीधे नाइट्रोजन के रूप में ही ग्रहण नहीं कर पाते। ये जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण करते हैं। इन्हें सहजीवन सूक्ष्म जीव कहते हैं। दाने वाली फसलों में ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हुए ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब फसलों को जैव उर्वरकों का टीका लगाया जाता है तो वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु पौधों के सहयोग से नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की क्षमता रखते हैं। इसे सहजीवी संगठन कहते हैं। इन जीवाणुओं के निवेशन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति से अरहर में 19% उपज की वृद्धि, मूंग उड़द में 20% की वृद्धि और लोबिया में 23% की वृद्धि, मसूर में 32% तक वृद्धि होती है। इसी तरह मटर, मूंगफली, बरसीम, लूसर्न में 15-30% तक की वृद्धि होती है। इसी तरह नीली हरी काई जिसको ब्लू ग्रेन एल्गी कहते हैं धान में 15% की वृद्धि करती है। एजोटोबैक्टर से गेहूं, सरसों, कपास, तरकारी आदि में 10% तक की वृद्धि होती है। एजो स्पेरिलम से बाजरा, ज्वार, धान की फसलों में 15% की वृद्धि होती है। इस तरह से जैव उर्वरकों में और सूक्ष्म जीवाणु रखने का ये गुण हमारी फसल में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीवों में एजेटोबैक्टर, एजो स्पेरिलम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला जैसे जीवों से निर्मित जैव उर्वरक हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ही उत्पादनकारी साबित हुए हैं। एजोटोबैक्टर कृषि में अपने योगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रचलित जीवाणु हैं। यह स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। एजोटोबैक्टर की कुछ उपजातियां जैसे एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर एजिलिस और वाइनीलैंडी बेंजरिक प्रमुख हैं। ये जीवाणु भूमि और जड़ की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जीवाणु पौधों की जड़ों के द्वारा निकाले गए पदार्थों जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और विटामिन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर जीवाणु किसी भी गैर दलहनी फसलों में उसके जीवाणु कल्चर का प्रयोग करके लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे गेहूं, कपास, बाजरा में इसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों में एजो स्पेरिलम जीवाणु गेहूं में 22% तक तथा धान में 77% तक की उपज में वृद्धि करते हैं। इसी तरह एजोटोबैक्टर गन्ने में 20% तक उत्पादन की वृद्धि करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी से जैव उर्वरक बनाने के लिए पहले एल्गी का उत्पादन किया जाता है। इसको ईंट या गारे की 6×3×9 इंच की ट्रे में 5 से 6 किलो मृदा मिलाकर सुपर फास्फेट तथा 2 ग्राम सोडियम मॉलीब्डेनम को ट्रे में पानी में भरकर मिला देते हैं और ये 10 से 15 दिनों में एल्गी की मोटी तह का रूप ले लेते हैं। यही ब्लू ग्रीन एल्गी युक्त जैव उर्वरक है जो धान में 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि करता है। यह वृद्धि 14% के बराबर है। इसी तरह एजोला भी एक जलीय फर्न है जो नीले हरे शैवाल के सहसंबंध में सतह पर छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं और सूर्य ऊर्जा का स्टोर करते हैं और जीव पदार्थ पैदा करते हैं। राइजोबियम भी एक प्रकार का सहजीवी बैक्टीरिया है जो मटर कुल के पौधों में इसकी जड़ों में रहता है। फास्फोरस परिवर्तनीय जैव उर्वरकों का कृषि क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। ये पौधों में फास्फेट को उपलब्ध कराते हैं। फास्फेट फास्फोरस के रूप में होता है। इस प्रकार के उर्वरक या तो फास्फेट को विलेय करने वाले या अवशोषित करने वाले जैव उर्वरक होते हैं। फास्फोरस

0: पौधों के लिए नाइट्रोजन के बाद मुख्य पोषक तत्व है। फास्फोरस की दी हुई मात्रा का केवल 15 से लेकर 25% भाग ही पौधों को प्राप्त होता है। फास्फेट विलेय जैव उर्वरकों की जड़ में स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग फास्फोरस को घोल के प्राप्त होने वाली रूप में होता है। फास्फोरस में बदलकर फसलों की जड़ों में फास्फोरस की प्राप्ति कर इसमें वृद्धि करता है। यह जीवाणु एक फास्फेट में कुल अविलेय फास्फोरस जो कि क्षारीय मृदाओं में पौधों को अप्राप्य होता है विलेय करते हैं। इससे पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है जिससे जड़ों की मजबूती और स्थिरता मिलती है। फसलों के पौधों में जड़ें जो हैं गुच्छेदार बन जाती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मददगार सिद्ध होती हैं। फास्फेट अवशोषक जैव उर्वरक जो पौधों को कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कराती हैं पोषक तत्वों और हार्मोन्स में वृद्धि करती हैं। इस तरह से पौधों की जड़ और उसके अंदर पाई जाने वाली फंजाई का आपस में संबंध माइकोराइजा कहलाता है जो जड़ ग्रंथियों की वृद्धि करता है और फसलों में उपापचय को भी बढ़ाता है। इस तरह माइकोराइजा और राइजोबियम से युक्त ये जैव उर्वरक जड़ तंत्र के बाहरी भाग का विस्तार तो करते ही हैं, साथ ही इनमें कवक सूत्र अत्यधिक मात्रा में फैलकर गहराई में जाकर पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर और जिंक को मृदा से अवशोषित करके उनका संचयन भी करते हैं और पौधों के अंदर अच्छी तरह से वृद्धि कराते हैं। आज के समय की कृषि जिसमें कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता का ह्रास हुआ है ये जैव उर्वरक रामबाण ही सिद्ध हुए हैं। इससे न केवल फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है अपितु भूमि की उर्वरता को पुनः संचित करने में भी मदद मिलती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जैव उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे बीज उपचार पौध जड़ कंद उपचार और मृदा उपचार भी हम कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर या एजोस्पेरिलम या राइजोबियम या फास्फोटिका को 500 ml पानी में मिलाकर किसी छायादार जगह पर 10 से 12 किलोग्राम बीज पर दोनों हाथों से भली प्रकार मिलाएं, फिर छाया में सुखाकर इसका उपयोग करें। इसी प्रकार जैसे आलू तथा अन्य कंदों का उपचार करते समय 2 किलोग्राम जैव उर्वरक 10 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं। इससे 10 कुंटल कंद या आलू उपचारित किया जा सकता है। इसको 10-15 मिनट तक डुबोकर रखें, तत्पश्चात बुआई या रुपाई करें। इसी प्रकार मृदा उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरक का 10 से 60 किलोग्राम कंपोस्ट भुरभुरी मिट्टी में तैयार किया हुआ मिश्रण एक एकड़ खेत में आखिरी जुताई के समय या फिर फसल में पहली सिंचाई से पहले समान रूप से छिड़क दें। इस तरह जैव उर्वरकों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में स्वयं तो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, साथ ही भारतवर्ष को जो कि एक कृषि प्रधान देश है उत्पादन की दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे जैव उर्वरकों की कृषि में उपयोगिता विषय पर अवधेश उपाध्याय की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपति टोलाम इत्यनयोर मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं संधि विज्ञप्ति पत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने 12 वादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस

0: कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. around 15 BJP and 14

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एनीमिया कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता।
1: एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसको कि हम ये देखते हैं कि ये किन्हीं तमाम कारणों से हमारे हिंदुस्तान में व्याप्त

0: है। एनीमिया का मतलब है रक्त की कमी। रक्त की कमी इसका एक मानक है जिसको कि हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम परसेंट से कम होती है तो उस व्यक्ति को एनीमिक कहा जाता है, यानी कि वो व्यक्ति में रक्त की कमी मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष में इसका मुख्य कारण है कि भारतवासी शाकाहारी होते हैं और इसके कई कारण होते हैं। रक्त की कमी मुख्यतः 3 कारणों से होती है, या तो शरीर में रक्त बनना कम हो जाए या बंद हो जाए, या शरीर से रक्त लगातार किन्हीं अंगों के द्वारा बहता रहे, या बन भी ठीक रहा हो निकल भी ना रहा हो लेकिन शरीर के अंदर किन्हीं अंगों में उनका उपयोग अधिक हो जाए। कारण बहुत से हैं जिनको के चिकित्सक अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और रक्त में विभिन्न प्रकार की जांचों से ये पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में एनीमिया या रक्त की कमी क्यों है, और इसका उपचार भी इनके कारणों के अनुसार किया जाता है। महिलाओं में रक्त की कमी मुख्यतः खान पान में लौह तत्व की कमी के कारण और मासिक धर्म अधिक होने के कारण या पाचन शक्ति सही न होने के कारण, जिसमें कि महिला ठीक पोषक तत्व ले रही है लेकिन फिर भी शरीर के अंग उस लौह तत्व को अपने अंदर न लेकर और शरीर में रक्त की कमी पहुंचा रहे हैं। महिलाओं में रक्त की कमी के और भी कई कारण हैं, जिसमें बार बार प्रेगनेंसीज का होना, बार बार गर्भपात होना, और महिलाओं पर उतना ध्यान, उनके खाने पीने पर उतना ध्यान न देना जितना कि एक नॉर्मल घर के सदस्य में दिया जाता है। मैं अपने श्रोताओं को एक विशेष रूप से ये बात बता देना चाहूंगी कि रक्त की कमी को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों के खान पीन पर, उनके पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आजकल जंक फूड और जो फास्ट फूड का चलन है उसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए, क्योंकि इन फास्ट फूड में पोषक तत्वों की बेहद कमी होती है और मैदा के बेस होने के कारण ये जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं ये शरीर की पाचन शक्ति को बहुत कमजोर बना देते हैं। यदि महिलाएं और घर के बड़े सदस्य इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों में रक्त की कमी का ध्यान रख सकते हैं। और महिलाओं की रक्त की कमी के लिए सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि दो बच्चों के बीच में इतना अंतर रहे ताकि पहली डिलीवरी, पहले प्रसव के बाद महिला पूरी तरह से रिकवर कर जाए और दूसरी प्रेगनेंसी के लिए, दूसरे प्रसव के लिए वो शारीरिक रूप से पूर्णतः तैयार हो जाए। महिलाओं में मासिक चक्र अधिक और अनियमित होने के कारण भी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर महिला को लगे कि उसका मासिक चक्र अनियमित है या मासिक धर्म में रक्त का प्रवाह ज्यादा है और ज्यादा दिन तक होता है तो उसे तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और ये चाहिए कि उसको सही उपचार किया जाए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्त की कमी एक ऐसी बीमारी की जड़ है जो कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियों का आह्वान करती है, इसलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि आप अपने पोषक तत्वों पर ध्यान रखिए और अपने चिकित्सक को सही समय पर सलाह लीजिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनीमिया कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अलका सेन की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में ये देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सुबह के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेशकों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। प्रदेश में आज से शुरू हो रही है स्वगणना की सुविधा, 21 मई तक पोर्टल

0: पर जाकर लोग खुद भर सकेंगे अपना डेटा। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गणना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से किया संवाद, कहा निर्यात से किसानों की आय के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में डिजिटल हुई खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से प्रदेश में इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
1: अपने बिजनेस

0: सुविधा 21 मई तक दी जाएगी। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपना पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन भर सकेंगे। मुख्य प्रधान अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
1: 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सके, तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एनुमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया। और आपकी जो भी स्वगणना आईडी है, जब आपका प्रगणक आपके घर आता है उसके साथ साझा करें।
0: जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था। एक रिपोर्ट।
2: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहती है। इसके लिए सब्जियों और फलों की प्रोसेसिंग तथा ब्रांडिंग के जरिए निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री कल रात लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से संवाद कर रहे थे।
3: उत्पादन में हम अग्रणी हैं कई फलों में, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा काफी कम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे फल, हमारी सब्जियां, उनका निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
0: कृषि मंत्री आज केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ICAR में राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के लिए रास्ते खोलना है। राज्य सरकार ने नागरिकों को राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व विभाग की इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जनपद, तहसील और गांव की जानकारी भरकर संबंधित गाटा संख्या चुननी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश भर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले तथा बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाता है। मेरठ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों को सुलह से निस्तारित करने की कोशिश की जाएगी।
5: ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए, जिससे लोगों के खर्च कम हो। और हम इसका लोक अदालत का उद्देश्य भी सस्ता और सुलभ न्याय है, जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके।
0: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर पटिया में कल देर शाम यमुना नदी में एक नाव के

0: असंतुलित होकर पलट जाने से 6 लोग नदी में लापता हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गईं। डीआईजी बांदा राजेश यस ने बताया कि नाव में कुल 9 लोग सवार थे।
1: सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और उस नाव में कुल 9 लोग सवार कर रहे थे, उसमें 3 लोग सुरक्षित तैरकर आ गए हैं और 6 लोग लगभग लापता हैं।
0: नदी में लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के जवानों और गोताखोरों को लगाया गया है। हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले को देखते हुए आज दोपहर 3 बजे से मैच के समाप्त होने तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेशकों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। प्रदेश में आज से शुरू हो रही है स्वगणना की सुविधा। 21 मई तक पोर्टल पर जाकर लोग खुद भर सकेंगे अपना डेटा। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गणना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से किया संवाद, कहा निर्यात से किसानों की आय के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में डिजिटल हुई खतौने की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना महुआखेड़ा अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम जयप्रकाश शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर शर्मा है। ये विगत 25 मार्च 2026 से लापता हैं। जयप्रकाश शर्मा कोछोड़ महुआखेड़ा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी आयु 29 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। जयप्रकाश शर्मा उर्फ कालू के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना महुआखेड़ा जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। थाना अग्राबाद अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जानकी पुत्री संजय कुमार

विगत 3 अप्रैल 2026 से लापता हैं। ये ग्राम गोवरा अलीगढ़ की रहने वाली हैं। जानकी की आयु 17 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। इनकी पीठ पर कुबड़ है। ये सलवार सूट पहने हुए हैं। जानकी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। थाना इगलास अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार सईद पुत्र साबुद्दीन विगत 3 अप्रैल 2026 से लापता है। ये ग्राम सिरकुरा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सईद की आयु 13 वर्ष, ऊंचाई 3 फीट 5 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। इनके पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हैं। ये पीले रंग की टी शर्ट, काले रंग का लोअर और पैरों में नीले रंग की हवाई चप्पलें पहने हुए हैं। सईद के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना इगलास जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। आज से खुद करवा सकेंगे अपनी गिनती। उत्तर प्रदेश के निवासी गुरुवार यानी आज से अपनी जनगणना खुद कर सकेंगे। जनगणना का पहला चरण शुरू होने से पहले गुरुवार से स्वगणना शुरू होगी। यह प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी, जिसके बाद 22 मई से प्रगणक खुद जाकर आंकड़ों की तस्कीद करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया होगा उनका ब्यौरा दर्ज करेंगे। 22 मई से शुरू होने वाला यह चरण 20 जून तक चलेगा, जिसमें मकानों की गणना प्रगणक घर घर जाकर करेंगे। इसका दूसरा चरण अगले साल होगा। बुधवार को जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में की जा रही है। निदेशक व मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार से शुरू होने वाली स्वगणना में लोग स्वगणना के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। उन्हें 34 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद उन्हें एक विशेष स्वगणना आईडी मिलेगी। जब प्रगणक उनके पास तक पहुंचेंगे तो वे उसकी तस्दीक करके आईडी जनगणना पोर्टल पर दर्ज करेंगे।

सीबीएसई स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र किया गया अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठवीं से तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह 31 मई तक आधिकारिक पोर्टल पर तीसरी भाषा का चयन कर उसे अपलोड करें। साथ ही यदि आवश्यकता है

आवश्यक संशोधन भी पूरा कर लें। नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई स्कूलों ने समय रहते भाषा विकल्प अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अब भी कुछ स्कूल प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ संस्थानों ने 3 भाषा नीति के अनुरूप विकल्पों का चयन नहीं किया है। ऐसे में बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि तय सीमा तक सही जानकारी अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

7 मई की रात आधे घंटे के लिए बंद रहेगी अनारक्षित टिकट बुकिंग सेवा। भारतीय रेलवे की डिजिटल सेवा रेलवन ऐप पर अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग सेवा 7 मई यानी आज की रात 12 बजे से 12:30 तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। रेलवे ने अलर्ट जारी कर बताया कि व्यवधान निर्धारित तकनीकी रखरखाव के कारण रहेगा। रेलवे के अनुसार इस दौरान यात्री मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। हालांकि रेलवन ऐप की अन्य सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी, जिससे यात्रियों को सीमित असुविधा ही होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीकी कार्य सिस्टम की कार्यक्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए एक बार फिर चलते हैं आज की मुख्य सूचनाओं की ओर। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए आज से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए टिकटों की बुकिंग आज यानी गुरुवार से शुरू हो सकती है। पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग शुरू हो जाएगी। 15 जून को नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान नवी मुंबई के लिए होगी। पहले दिन रनवे से इंडिगो की दो फ्लाइट उड़ान भरेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ का कहना है कि गुरुवार को नोएडा एयरपोर्ट से शेड्यूल फ्लाइट के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट से देश के विभिन्न शहरों की फ्लाइट भी शेड्यूल हो जाएंगी। अभी इंडिगो ने यात्री सेवा शुरू करने की घोषणा की है। जल्द ही अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की यात्री एवं कार्गो सेवाएं शुरू होने की तिथि और फ्लाइट शेड्यूल भी घोषित होंगी। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम को स्वीकृति के बाद से ही विमान सेवा शुरू होने को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 15 जून को इंडिगो की फ्लाइट के साथ ही यह इंतजार समाप्त हो जाएगा। इस बीच एयरलाइंस कंपनियां व अन्य एजेंसी ने एयरपोर्ट से यात्री सेवा शुरू होने के मद्देनज़र अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई हैं।

सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे पीआरओ ने बताया कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी।

वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण मान्य नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणिक प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

मई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही हैं। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी।

आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ के अनुसार कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरई से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होगी। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके

0: से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती

0: इरा दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका

0: और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नब में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Keralam, meeting of the newly elected legislatures of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand,

0: अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर कासगंज में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आयोजित तो होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे बैंक, भू राजस्व, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138, NIAT के मामले, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों सहित तमाम अन्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। कासगंज पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। जनपद कासगंज में यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए 2 और 3 मई को विशेष अभियान के तहत हजारा नहर पुल, बिलरामठी में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा इस अवसर पर मलेरिया रोग के कारणों, उपचार एवं बचाव के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मलेरिया एवं अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण एवं उपचार हेतु शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि मलेरिया मच्छर जनित रोग है, अतः मच्छरों के नियंत्रण हेतु किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा न होने दें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 106.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को। धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम था ब्लफ मास्टर। श्रोताओ, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को। धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दीवाना।

श्रोताओं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में भी आप सुन रहे थे फिल्म धूल का फूल का ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया था एन दत्ता ने। श्रोताओं, पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अंदाज मेरा मस्ताना मांगे दिल का। श्रोताओं, लता मंगेशकर और साथियों के गए फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उमा देवी गौतम के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

छोटा वो अपने आप समझे थे उमा देवी गौतम के गए कुछ लोग। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अभी भी संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं अब समय है कार्यक्रम सुर सरिता का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से। गीत को गाया है चित्रा ने, गीतकार हैं महबूब और संगीतकार हैं AR रहमान।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण व साथियों की आवाज़ों में फिल्म दिल चाहता है का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम सुरसरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने। फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म हीरो नंबर वन का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत बद किया है आनंद मिलिंद ने।

ए हरिहरन, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुरु का ये गीत। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। इसी के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभात्रे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग देसी। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रभा अत्रे का विलंबित एक ताल में और द्रुत ख्याल तीन ताल में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार अपनी रेडियो साथी नीतू दुबे के साथ। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर, साथियों, जिसमें हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको एक कलाकार का परिचय कराते हैं जो कि हमारी फिल्मों से संबंधित हैं। और साथियों, आज हम जिन कलाकार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वे हिंदी सिनेमा और भारतीय सांस्कृतिक जगत के एक ऐसे रचनाकार थे जिनके गीतों में देशभक्ति भावनाएं और जन चेतना की गूंज सुनाई देती थी। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कला अलग ही दिखाई देती है। वो जो करते हैं दिल से करते हैं। ऐसे ही महान कलाकार थे प्रेम धवन, जिनके बारे में हम अभी आपसे और भी बातें करेंगे। पहले सुनते हैं उनका ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रेम धवन जी के बारे में, जिनका जन्म 13 जून 1923 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत, कविता और नृत्य में गहरी रुचि थी। लाहौर के एफसी कॉलेज से इन्होंने स्नातक की शिक्षा पूरी की। इसके साथ ही मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी इनके सहपाठी थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इनके सीनियर छात्र थे। साहिर लुधियानवी और प्रेम धवन यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और कॉलेज की पत्रिका में दोनों ने जमकर लिखा। साथियों, साहिर लुधियानवी गजल रचते थे और प्रेम धवन गीत लिखते। शिक्षा के बाद वे पीपल्स थिएटर ग्रुप में शामिल हुए, जिसके द्वारा 4 वर्षों तक इन्होंने नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया। प्रेम धवन ने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया। फिल्म नया दौर का गाना उड़े जब जब जुल्फें तेरी में प्रेम धवन का ही कमाल था और फिल्म 2 बीघा जमीन के गीत हरियाला सावन ढोल बजाता आया मैं तो प्रेम धवन जी थिरके भी हैं।

साथियों, देश प्रेम के गीतों में प्रेम धवन की विशेष रुचि थी। उन्होंने देश प्रेम के बहुत से गीत लिखे। प्रेम धवन केवल गीतकार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंदी फिल्मों

के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। इतना ही नहीं, नृत्य निर्देशन और अभिनय भी किया। ये कला हर किसी में नहीं होती, कुछ लोग ही होते हैं जो हर कला में माहिर होते हैं। प्रेम धवन ने पंडित रविशंकर से संगीत और पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रेम धवन ने गीतकार और संगीतकार के रूप में अपने करियर के अलावा दो फिल्मों में लाजवाब और गूंज उठी शहनाई में अभिनय भी किया। उन्होंने 7 फिल्मों के लिए कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। सत्यव वचन उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफर और गीतकार दोनों की भूमिका निभाई। ऐसे ही कला के धनी थे प्रेम धवन।

साथियों, प्रेम धवन हिंदी सिनेमा के एक भारतीय गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता थे जो देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते हैं। खासकर 1965 की मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद के बोल और रचनाओं के लिए उन्हें 1971 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों के गीत लिखे और 50 से अधिक फिल्मों में संगीत भी दिया। साथियों, पवित्र पापी फिल्म में भी प्रेम धवन का ही संगीत था, जिसमें उन्होंने पंजाबी फोक का इस्तेमाल बहुत ही खूबी से किया। उन्हें अलग अलग राज्यों के लोकगीत और संगीत की गहरी समझ थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी प्रेम धवन का नाम अपने समय के दूसरे गीतकारों की तरह लाइमलाइट में नहीं रहा। इसकी एक वजह यह भी थी कि वे खुद को दिखावों से दूर रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता, वे सीमा पर अपने फौजी भाइयों से मिलने जरूर जाते थे।

साथियों, जब भी देशभक्ति के गानों की बात होती है, प्रेम धवन का नाम शीर्ष गीतकारों में आता है। उनके लिखे गीत जैसे सरफरोशी की तमन्ना और ए वतन आज भी रगों में जोश भर देते हैं। उनके लेखन में सिर्फ शब्द ही नहीं, एक पूरा जज्बा बसता था। उन्होंने अपने गानों और संगीत से देशभक्ति और भावनाओं को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। 1946 में फिल्म धरती के लाल से इन्होंने गीतकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद एक के बाद कई फिल्मों में शानदार गीत लिखे, जिसमें आराम, तराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुलीवाला, एक फूल दो माली और पूरब पश्चिम शामिल हैं। उनमें देशभक्ति का जज्बा था। ऐसे महान कलाकार ने 7 मई 2001 को 77 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया और वे अपने गीतों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में बसते हैं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम आज आपसे बातें करेंगे विश्व एथलेटिक्स दिवस के बारे में, शारीरिक सक्रियता के बारे में, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपको बता दें, इस दिन का उद्देश्य युवाओं और बच्चों के बीच खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर देखा जाए तो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसे ये रोग इतने ज्यादा हो रहे हैं कि पहले इन बीमारियों के सिर्फ नाम सुनाई देते थे, अब तो इन बीमारियों का उम्र से भी कोई लेना देना नहीं रह गया। एक समय था जब सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ये बीमारियां होती थीं, और इन सब का कारण कहीं न कहीं शारीरिक सक्रियता का कम होना है। तो शारीरिक सक्रियता को हम बढ़ाएं, खेल कूदें, जिससे कि हमारा शरीर फिट रहे और हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगी।

साथियों, खुशियां जीवन में आएंगी कब? जब आप स्वस्थ होंगे। साथियों, स्वस्थ होना कितना जरूरी है ये तो आप सबको पता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, खेलना कूदना पड़ता है। वैसे शारीरिक सक्रियता का अर्थ केवल खेल कूद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोजमर्रा की छोटी मोटी गतिविधियां भी शामिल हैं, जैसे पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, योग करना और हल्का व्यायाम करना। पता है, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 30 मिनट शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। इससे शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, और जब मन स्वस्थ रहता है तो तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आपके सारे काम अच्छे से और मन लगाकर होते हैं। और जब काम मन लगाकर होंगे तो खुशी से आप करेंगे तो आपकी उस खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा, तभी तो रास्ते हंसते हंसते कटेंगे।

साथियों, खेल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे देश में कई महान खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपने परिश्रम और अनुशासन से पूरी दुनिया में भारत का

नाम रोशन किया, जैसे मिल्खा सिंह जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और पीटी उषा जिन्होंने एथलेटिक्स में नई ऊंचाइयां हासिल की। इनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि निरंतर अभ्यास और शारीरिक सक्रियता सफलता की कुंजी है। अगर देखा जाए तो आज के डिजिटल युग में बच्चे हों या युवा, ज्यादातर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताते हैं, जिससे उनकी शारीरिक सक्रियता घटती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि अपनी दिनचर्या में खेल और व्यायाम जरूर शामिल करें, तभी स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं।

जी हाँ साथियों, खेलेंगे तो हर मैदान फतेह जरूर करेंगे। साथियों कहते हैं, आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा युवा स्वस्थ बनेगा। स्कूलों, कॉलेजों और परिवारों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। खेल केवल तनाव दूर और मनोरंजन के लिए ही नहीं होते, बल्कि इनसे टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास जैसे गुण भी विकसित होते हैं। खेलों से खिलाड़ी अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और सहयोग जैसे गुण सीखते हैं, जो जीवन में बहुत काम आते हैं। पता है साथियों, खेल हमें हार जीत को समान रूप से स्वीकार करना, जीवन के उतार चढ़ावों का डटकर सामना करना सिखाते हैं। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए जरूर प्रेरित करना चाहिए।

साथियों, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और हम उन्हें जैसा ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि खेल का मन और मस्तिष्क से घनिष्ठ संबंध है। खेल के मैदान में उतरने पर मन

अप्रसन्नता से भर जाता है और उस दौरान तनाव, चिंता जैसी समस्याएं हमारे दिमाग से दूर चली जाती हैं, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। आप ही सोचिए, यदि हम हर समय काम करते रहें और तनाव लेते रहें तो हमारा शरीर बेकार सा लगने लगता है। न कोई उमंग, न प्रसन्नता, सिर्फ मन पर भारी बोझ। वहीं यदि हम खेलें, कूदें, हंसें, मुस्कुराएं तो हमें काम के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। साथियों, खेलों से नई स्फूर्ति और शक्ति का संचार होता है। तो साथियों, विश्व एथलीट दिवस हमें ये संदेश देता है कि शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। इसलिए अपनी दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

0: जिंदगी।
1: साथियों, खेल केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं देते बल्कि ये समाज में एकता और मेलजोल बढ़ाने का कार्य भी करते हैं जिससे खुशी मिलती है। साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: असंबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
1: है
2: ना? बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राण वायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या है।
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी।
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी।
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है।
1: ये देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे

0: समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है,
1: दूसरी बात है इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
0: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
1: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
0: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
1: जी,
0: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
1: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
0: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
1: जी,
0: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
1: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800044055 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
0: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले

0: ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर

0: भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: बालक था। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना आइए सुनते हैं, रेस फिल्म से। स्वर आतिफ असलम का है, गीत रचना समीर की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना रेस फिल्म का ये तराना, और आइए अब सुनते हैं लव आजकल फिल्म से ये तराना नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

भूतनाथ रिटर्न्स, इस फिल्म का तराना भी आपने सुना। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं दबंग फिल्म से राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल के स्वर में। गीत रचना फैज अनवर की है और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का

0: तफसील सालाना हेल्थ चेकअप पहल का आगाज किया। इस इकदाम के तहत 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के कारकुनान मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेहत का मुआयना कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के कुरारा थाना इलाके में दरिया यमुना में एक कश्ती उलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा पेश आया। गोताखोरों ने दरिया यमुना में डूबने वाले तीन अफराद की लाशें बरामद की। तीन लापता बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब एक शादी में शरीक नौ अफराद की कश्ती उलटने के बाद दरिया में गिर गई। इनमें से तीन तैर कर महफूज मुकाम पर पहुंच गए, बाकी छह की तलाश जारी है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने वाकई का नोटिस लेते हुए अफसरान को राहत और बचाव कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की तलाश में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही वजीर आला ने जिले इंतजामिया को हादसे की वजूहात जाने, मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम करने की भी हिदायत दी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान आईपीएल क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। राजधानी लखनऊ, चित्रकूट, मैनपुरी, पीलीभीत, हमीरपुर और आसपास के अजला में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने अगले दो घंटे में चित्रकूट, प्रतापगढ़, जालौन, मेरठ, बरेली, बदायूं और कई दीगर अजला में बारिश और आसमानी बिजली गिरने के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम घर संसार में और मैं हूं आपके साथ रचना। सखियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी इतनी ज़्यादा गर्मी, कभी बेमौसम की बारिश, तो कभी भयंकर सूखा, ये सब आखिर हो क्यों रहा है? तो इसका जवाब है जलवायु परिवर्तन, और इसका सीधा सा अर्थ है मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। क्यों इन सब के पीछे का मुख्य कारण है बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। सखियों, इस समस्या का असर सिर्फ हमारे पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर, खेती पर और भविष्य पर भी पड़ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें और हम मिलकर एक कोशिश करें तो इसे कम करने में हम अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हम अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाएं, तो जैसे पेड़ लगाना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। इन सब छोटे छोटे प्रयासों से हम बहुत हद तक अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, किचन वेस्ट से खाद बनाना, कपड़े से बने थैले का उपयोग करना, ये छोटे छोटे प्रयास दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं पर हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसके साथ आप अपने बच्चों को भी प्रकृति से प्यार करना ज़रूर सिखाएं, उन्हें प्रकृति के साथ जोड़ें, उनके हाथों से पौधे लगवाएं और उनको उस पौधे की देखभाल करने की जिम्मेदारी डालें, तो जिससे वो बच्चे भी आपके प्रकृति से जुड़ जाएंगे। और होगा क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण बहुत सुरक्षित है। तो बहनों, ये तो हुई एक छोटी सी चर्चा, आगे और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा अंतराल।

सखियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं एक ऐसे महान साहित्यकार, कवि, लेखक और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। सखियों, इनको तो आप बखूबी जानती ही हैं और इनके लिए कोई अलग से परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति, मानवता और जीवन की गहराइयों को बड़ी गंभीरता से दर्शाया है और इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई काव्य संग्रह गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार भी दिया गया, जो कि सभी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। टैगोर जी द्वारा लिखित हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ऐसा विद्यालय की स्थापना इन्होंने की जो कि शांति निकेतन में स्थित है, जहां बच्चों को प्रकृति के बीच शिक्षा दी जाती थी और ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इनकी ये सोच आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, सरलता और मानवता को अपनाएं। बहनों, ये एक छोटी सी जानकारी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थी और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस महान व्यक्तित्व को शत शत नमन करते हैं। सखियों, अब चलते हैं अपने रिश्ते नातों की तरफ। सखियों, रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपस में अपनापन हो, प्यार हो और सम्मान हो, तभी रिश्ते जीवन भर मिठास भरे रहते हैं। और इसके साथ ही सभी रिश्तों में सम्मान का भी बहुत महत्व है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो घर में प्यार और समझ बढ़ती है, क्योंकि सखियों, सम्मान देना सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी वर्ग का हो। एक छोटी सी मुस्कान, मीठे शब्द और दूसरों की भावनाओं को समझना, बस यही असली सम्मान है। सखियों, जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं ना, तो बदले में हमें भी सम्मान मिलता है और ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, साथ ही रिश्तों में भी मिठास लाता है। और मेरा मानना है कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से झलकता है। जैसे किसी की बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़ों का आदर करना और छोटों के साथ प्यार से पेश आना, यही एक सच्चा सम्मान है। वैसे भी घर हो, स्कूल हो या कार्यस्थल, हर जगह सम्मान का वातावरण तो होना ही चाहिए। और हम सभी ने बचपन से सीखा भी है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और खासकर महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान तो ज़रूर करना चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। और सखियों, अगर आज के समय की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी हमें सभ्य भाषा और मर्यादा का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो बहनों, ये हुआ छोटा सा हमारा एक सेगमेंट जिसमें हमने बात की सम्मान के विषय में। सखियों, अगर शब्दों के साथ संगीत भी मिल जाए तो शब्दों की ताकत दोगुनी हो जाती है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे से घर को सजाने की। और आज इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिएटिव और ट्रेडिंग आर्ट के बारे में जिसे डूडल आर्ट कहते हैं। अब सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि ये डूडल आर्ट होता क्या है। डूडल आर्ट यानी साधारण रेखाओं, आकृतियों और छोटे छोटे डिजाइनों से बनाई गई एक कला का नाम है। इसमें किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ही इसके सबसे बड़ी ताकत है। और आजकल डूडल आर्ट को शोपीस के रूप में बहुत पसंद किया जा रहा है। आप इसे कैनवास पर, दीवार पर, फोटो फ्रेम पर या किसी घर में पड़े पुराने सामान पर भी बड़ी आसानी से बना सकती हैं और अपने घर को इस डूडल आर्ट से एक नया और यूनिक लुक दे सकती हैं। इस आर्ट में खास बात यह है कि डूडल आर्ट बहुत कम खर्च में तैयार हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है। तो आप चाहें अपने नाम पर पसंदीदा कोट्स या छोटे छोटे पैटर्न्स के साथ एक सुंदर शोपीस तैयार कर सकती हैं, जो आपके घर की सजावट को खास बना देगा। तो अपनाइए इस न्यू आर्ट पैटर्न को और सजाइए अपना घर। सखियों, वैसे तो महिलाओं के अधिकार हर क्षेत्र में हैं, और इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए भी उनके कार्यस्थल पर कौन कौन से अधिकार होते हैं, इस बारे में विस्तार से समझते हैं संजीव श्रीवास्तव जी के द्वारा इस वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार।
1: हर व्यक्ति जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर आता है, चाहे वह जीने का अधिकार हो या विकास के लिए अवसर प्राप्त करने का। मगर इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव की वजह से महिलाएं अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इसी कारण महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु हमारे संविधान में अलग से कानून बनाए गए हैं और महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने के लिए ये कानून पूरी तरह मदद कर सकें, इसके लिए समय समय पर उनमें संशोधन भी किए गए हैं। भारत के संविधान में महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना है और इन्हें नागरिक, वयस्क, मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरुषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए गए। इन सभी के प्रभावों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने भेदभाव रहित लोकतंत्र की रचना की, जिसमें समानता के ध्येय को सर्वोपरि रखा और महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा उन्हें हर क्षेत्र में मौका देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जिसके माध्यम से ऐसा वादापन तैयार किया जाता है कि महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारों एवं महिलाओं के उन अधिकारों की सिफारिश करना जो महिलाओं को समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान हिस्सेदारी दिला सके। बदलते परिवेश में संविधान के 12वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नारी सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करने का

आदर्श अंगीकृत किया गया है। विश्व में काम के घंटों में 60% से अधिक योगदान महिलाओं का है, फिर भी वे मात्र 1% संपत्ति की ही मालिक हैं। महिलाएं एक दिन में पुरुषों की अपेक्षा 6 घंटे अधिक कार्य करती हैं, इसके बावजूद भी उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। कामकाजी महिलाओं में 50% कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार होती हैं, जिनमें मानसिक उत्पीड़न जैसे कार्य का अधिक बोझ या अवकाश की आवश्यकता होने पर भी उसे न देना आदि सम्मिलित है। इन्हीं समस्याओं के आधार पर सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2010 पारित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के हाल के सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 10 में से 4 महिलाएं ऐसी हैं जो कभी न कभी बस, रेल, सड़क, गली में और स्कूल, कॉलेज, बाजार, काम के स्थानों उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। 99% कामकाजी महिलाओं का कहना था कि वे कार्यस्थल पर अपने पुरुष सहयोगियों पर भरोसा नहीं करती। 77% महिलाओं ने माना कि काम के स्थान पर भद्दे मजाक, व्यंग आदि के कारण वे तनाव में रहती हैं। 80% महिलाओं का कहना था कि कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल न मिलने के कारण उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। उल्लेखनीय बात यह है कि 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निजी व सरकारी कार्यालयों, कंपनियों, उद्योगों आदि के लिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, किंतु उसके बावजूद महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका अनुमान अभी प्रस्तुत किए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इसी संदर्भ में समय समय पर नए कानून बनाए गए व पुराने कानूनों में संशोधन किया गया, जिससे कार्य क्षेत्र में महिलाओं को उचित सुरक्षा व कार्य का वातावरण दिया जा सके। इन्हीं समस्याओं को सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2010 के प्रावधानों के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को रक्षा प्रदान की है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी महिलाओं को समानता, जीवन और स्वतंत्रता और समान लिंग के अधिकार की प्राप्ति के लिए योगदान देगा। कार्यस्थल में सुरक्षा की भावना, काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार, उनके आर्थिक सशक्तिकरण और विकास और सामाजिक विकास होना चाहिए। कार्यालय समय के बाद व अवकाश के दिन रुकना कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य जो महिलाओं के उत्पीड़न को दर्शाता है पूर्णतया प्रतिबंधित होना चाहिए और उसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी विभाग, संस्था, सार्वजनिक व निजी उपक्रम द्वारा संचालित कोई भी संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त यह विधेयक उन पर भी लागू होगा जो कि ग्राहक के रूप में प्रशिक्षु व दैनिक भोगी मजदूर आदि के रूप में कार्यस्थल में प्रवेश करती हैं, के लिए भी यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक नियोक्ता सभी कर्मचारियों को एक स्वच्छ कार्य का वातावरण कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कराएगा जो कि कार्य करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा व उन दिशा निर्देशों का प्रदर्शित करेगा जिसमें महिलाओं के विरुद्ध यौन व असंगत कार्य करने पर सजा का प्रावधान क्या है लिखा होगा। कार्यालय नियमानुसार नियोजक को सभ्य व सुसंस्कृत व्यवहार करना चाहिए। भाषा मर्यादित और साधारण होनी चाहिए। द्व्यर्थी शब्दों का बोलना व लिखना पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। सभी कार्य करने वालों के परिधान कार्यालय के काम के अनुसार होने चाहिए। महिलाओं के कार्य क्षेत्र या केबिन में पुरुषों का अनावश्यक रूप से रुकना, बार बार बिना कारण के जाना और उनके प्रसाधन कक्ष के पास जाना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसा करना गंभीर अपराध माना जाना चाहिए और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक महिला को इसके विरुद्ध उचित फोरम में शिकायत दायर करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नियोक्ता कार्य क्षेत्र में महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव या छेड़छाड़ या अन्य तरह की घटनाओं को रोकने हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकेंगी। उक्त समिति में 50% महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। नियोक्ता यदि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार पालन करने में विफल रहता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत या जाँच के लंबित होने की अवधि के दौरान महिला शिकायतकर्ता पर कोई खतरा या आक्रमण हो सकता है, ऐसी किसी जाँच तक या मामले के निपटारे तक शिकायतकर्ता को कार्य से छुट्टी का विकल्प भी दिया गया है। ऐसे किसी प्रकार के शोषण से पीड़ित महिला को उसकी निजता के हिसाब से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले में उसका बयान दर्ज किया जा सकता है व ऐसी कोई भी जांच या सत्र किसी महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष ही की जा सकेगी। शिकायत समितियों को 90 दिन के अंदर जाँच समाप्त करनी होगी व उसकी सिफारिशों को 60 दिन के अंदर नियोक्ता द्वारा क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के इन अधिकारों के अतिरिक्त उनके प्रसाधन कक्ष अलग और सुरक्षित होंगे। महिलाओं को गर्भावस्था में प्रसूति अवकाश कम से कम 3 माह की भी व्यवस्था नियोक्ता को करनी होगी व महिलाओं को कार्य क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सभी काम में और उसके पारिश्रमिक में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं को

0: क्षेत्र में इतने अधिकारों के होने के बावजूद भी उनका शोषण जारी है। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकारों को एक निगरानी समिति का गठन भी किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा भली बात से मिल सके।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, और वार्ताकार थे संजीव श्रीवास्तव। सखियों, अब कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें करें तो आज के ज्ञान विज्ञान सेगमेंट में हम बात करेंगे फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के समय में इस तकनीक ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। सबसे पहले तो आइए समझते हैं कि फिनटेक का मतलब क्या है। इसका मतलब है तकनीक के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को आसान, तेज़ और सुरक्षित बनाना। आज जब हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिजली का बिल भरते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो ये सभी चीज़ें फिनटेक के अंदर ही आती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये फिनटेक का ही एक उदाहरण है। सखियो, अब हमारा मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बैंक बन चुका है। महिलाएं अब घर बैठे ही पैसे भेज सकती हैं, बिल भर सकती हैं और अपने खर्चों का हिसाब किताब भी रख सकती हैं। भारत में UPI जैसी सुविधा ने डिजिटल भुगतान को बहुत आसान बना दिया है। अब नगद पैसे रखने की चिंता सबसे ज़्यादा कम हुई है और साथ ही लेन देन भी सुरक्षित और तेज़ हो गया है। और सखियों, फिनटेक ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है। छोटी छोटी बचत, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। इस टेक्निक से वर्किंग और हाउसवाइफ लेडीज के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भाई, अब घर बैठे सारे काम हो जाएंगे तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। अपना OTP, पासवर्ड या बैंक की जानकारी किसी के भी साथ कभी भी शेयर ना करें और सिर्फ भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करें, तभी हम ऑनलाइन फ्रॉड से भी बच सकते हैं। तो बहनों, ये तो हुई हमारी फिनटेक के बारे में जानकारी। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

तो सखियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आपसे विदा लेने का समय हो चला है। अगली बार फिर कुछ नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रचना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं जगजीत सिंह रिजवी।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIRF पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल।

0: बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्य विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग

0: के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्रीय शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे बेगम परवीन सुल्ताना का राग मिश्र में ठुमरी तुम राधे बनो श्याम, उसके बाद पंडित अजय पोहनकर का राग मिश्र पीलू में गायन। तो आइए पहले सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का ये ठुमरी तुम राधे बनो श्याम।

श्रोता, इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं आसका पंछी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी की लिखी गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आखिर क्यों इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वरों में। गीत रचना इंदिवर की थी और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। इसी के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अभी यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। गीत रचना समीर की है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कसूर फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वरों में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और अभिजीत के स्वर में।

0: अब आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, अस्थमा रोग कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में प्रोफेसर एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ नीरज यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो हम लोगों के जीवन से जुड़ा है, अस्थमा। और इस साल जो है मुख्य थीम जो हर बार रखी जाती है, इस बार की थीम है कि हर मरीज तक जो अस्थमा की दवाएं हैं उनकी बहुत आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके और किफ़ायती तरीके से उनको वो दवाएं मिल सकें। आज अस्थमा पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। चूंकि अस्थमा दिवस है, सबसे पहले तो यही बताएं श्रोताओं को कि अस्थमा है क्या और किस तरह से अस्थमा हमें हो जाता है। चूंकि आजकल जीवन शैली ऐसी है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है और उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं अस्थमा हमें होने के।
2: बेसिकली देखा जाए तो अस्थमा एक क्रोनिक इलनेस है, रिवर्सिबल। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हाइपर रिएक्टिव एयरवे हो जाता है। इसमें जो है जैसे ही किसी एलर्जन या पॉल्यूटेंट या फिर जो है किसी से जिससे सेंसिटिव एयरवे है वो टच में आता है या कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको जो है ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। ब्रोंको स्पाज्म होने के कारण बच्चे को जो है सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जो है चेस्ट में टाइटनेस जैसे सिम्टम आते हैं, कंजेशन जैसे सिम्टम आते हैं जिससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और बच्चा रोता रहता है। और ज्यादा ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है तो बच्चे को पसली चलने लगती है। पसली चल रही है तो बच्चे को निमोनिया हो गया है। तो वो पेरेंट्स हर बार इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, लेकिन वो निमोनिया नहीं होता, बेसिकली वो ब्रोंकियल अस्थमा होता है। उसमें जो है बार बार हाइपर रेस्पॉन्सिव एयरवे होता है, उसमें जो है ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, इस वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे ही बच्चे को जो है हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो बच्चे को तुरंत आराम मिल जाता है।
1: मतलब कॉमन सी चीज है ये पसली चलना, और हम शायद हर बार यही सोचते हैं कि पसली चल रही है, बार बार ऐसा हो जाता है, हम शायद ये नहीं समझ पाते कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो उसमें कहीं तकलीफ हो रही है।
2: बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और इसमें जो है हमारा एयरवे बहुत हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है कुछ एलर्जन से, जैसे पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड है, धूल के कण हैं या जो है पॉलन ग्रेन है, तो इसमें जो है सीरम आईजीई लेवल बढ़ा होता है, उस कारण जो है हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है और ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइंस सीक्रेट होते हैं और हिस्टामिन, जिससे ब्रोंको स्पाज्म होता है। ये ब्रोंको स्पाज्म होने से कुछ बच्चों को नेजल एलर्जी होती है, राइनाइटिस होने लगती है। जैसे ही एलर्जन उसके टच में आता है तो बच्चे को छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, पानी आने लगता है, लेकिन वो बेसिकली जुखाम नहीं होता है, वो एलर्जी के कारण दिक्कत होती है, वो वायरल नहीं होता है।
1: जी जी।
2: कुछ बच्चों में जो है जब ठंडे हवा से या ठंडे पानी से एक्सपोजर होता है तो भी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा होती है तो उसमें जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ब्रोंको स्पाज्म होने लगता है, FEV1 कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है
1: अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण
2: अलग अलग कारण होते हैं, सभी में एक कारण नहीं होता है, सबके अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, सबका अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो सीजनल एलर्जी होगी।
1: जी जी।
2: ठीक है, स्पेसिफिक
1: सीजन आएगा तो
2: स्पेसिफिक सीजन आएगा उसमें
1: ज्यादा उग्र हो जाएगा,
2: उसको राइनाइटिस होगी और जो है आई फ्लू टाइप सिम्टम आएंगे और उसको जो है ब्रोंको स्पाज्म, गले में खराश, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये सीवियरिटी भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। एलर्जी हो सकता है पोलन ग्रेन से, बहुत सारों को होती है, लेकिन सभी में सिम्टम एक से नहीं होते। किसी में राइनाइटिस तक रहता है, किसी में गले में खराश थोड़ा बहुत होता है, किसी में थोड़ा ब्रोंको स्पाज्म होता है, किसी में सीवियर ब्रोंको स्पाज्म होता है। जो सीवियर ब्रोंको स्पाज्म होता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कत ज्यादा है, उनको ट्रीट करने की जरूरत है।
1: अच्छा, आपने कहा कि ये जो अस्थमा, ऐसा तो है ना कि ये बच्चों की बीमारी है?
2: नहीं, सभी में होता,
1: किसी भी उम्र में भी हो सकती है।
2: किसी,
1: मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी को शुरुआत में बचपन से ही किसी के पर्टिकुलर एलर्जी हो जाए।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर दोपहर के 3:30 हुए हैं।

0: किसी के प्रति सेंसिटिव हो, बाद में भी ये चीज डेवलप हो सकती है।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे सीरम आईजी जिन बच्चों में बढ़ा होता है उनमें जल्दी प्रेसिपिटेट होने लगती है, जिनमें सीरम आईजी बच्चों में नॉर्मल होता है उनमें लेटर ऑन सिम्टम आते हैं, लेकिन एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह होती है तो उनमें अर्ली सिम्टम्स आ जाते हैं, उनमें जो है एलर्जन से जैसे ही एक्सपोजर होता है ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है और उनको स्नीजिंग, रनिंग नोज,
0: इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आमतौर पर घरों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं काम करती हैं और चूंकि रोजमर्रा के जो काम हैं उसमें झाड़ू पोछा तो कॉमन सी चीज है, किसी किसी को झाड़ू करने से या किसी दिन ज्यादा साफ सफाई कर ली तो फिर उनको बहुत अनइजीनेस होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी अस्थमा का ही एक प्रकार।
1: हाँ, वो भी एलर्जी का ही पार्ट है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है और कुछ लोगों में अगर जो है सीवियर फॉर्म है तो उसमें जो है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। जैसे होली दिवाली पे अगर देखा जाए जो घरों में सफाई होती है तो उन दिनों जो है ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट बढ़ जाते हैं, काफी पेशेंट आते हैं उन दिनों, तो क्योंकि घर में सफाई वगैरह चल रही होती है, हाउस माइट, हाउस डस्ट से एलर्जी होती है, सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चों को पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी होती है तो वो भी दिक्कत होती है, तो ऐसे में इनसे बचाव रखना चाहिए।
0: अभी एक चूंकि मुझे वाकया याद आ रहा है इसलिए उसका जिक्र करना चाहूंगा कि आई वॉज पोस्टेड इन करगिल, तो उधर जम्मू साइड में, कश्मीर साइड में और लद्दाख साइड में घरों में कालीन बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी डस्ट हो जाती है। वी आर नॉट यूज टू इट, हमारे यहाँ तो ये सब कालीन उतना नहीं बिछाते हैं। हमारे साथ का एक बंदा वहाँ जब था तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि कमरे में पूरे में कालीन बिछाए और वो जरा सी भी उसमें अगर ब्रूमिंग करता था तो उसको बड़ा दिक्कत होती थी।
1: बेसिकली अगर देखा जाए तो जो धूल से या हाउस माइट से जिनको एलर्जी होती है या हाउस डस्ट से या पेपर से, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जैसे धूल कई दिनों तक जमी है तो उसमें जो है
0: एक खास जैसे किस्म की स्मेल आ जाती है,
1: स्मेल आने लगती है, स्मेल से एलर्जी होती है। मुझे भी एलर्जी है, आपको बताऊं, अगर मैं जो है ना पुराना कपड़ा रखा हुआ जो धूप नहीं देखा हुआ है तीन चार महीने रखा रहे वो कपड़े को मैं पहन लूं तो मुझे ब्रोंकोस्पाज्म और स्नीजिंग और रनिंग नोज होने लगता है।
0: जी, जो मेरा आगे का सवाल था शायद उसका जवाब भी इसी में छुपा था जो आपने जिक्र किया कि हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एलर्जी है अगर हमें किसी से, हमें पता होता है कि वी आर एलर्जिक टू दिस, बट हमको ये सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि हम उन चीजों को अवॉइड करें जिनसे हमें कहीं ना कहीं दिक्कत है।
1: एलर्जी है जिसको तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है, सबसे अच्छा इलाज यही है कि उसको अवॉइड करें, उससे एक्सपोजर मेरा ना हो,
0: कम से कम हो,
1: कम से कम
0: अगर
1: हो।
0: होना भी है तो मिनिमाइज करें।
1: अगर एक्सपोजर होगा तो आपको रेस्पॉन्स आएगा, उसका हाइपर रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको अवॉइड आपको करना है, आपको पहचानना है, यही इलाज है। नहीं तो आप मेडिसिन जिंदगी भर खाते रहेंगे, बार बार दिक्कत होगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप अगर इलाज सही से नहीं ले रहे हैं तो उसको
0: या समय पे इलाज नहीं मिल पाया
1: तो कभी कभी सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म स्टेटस एस्थमेटिकस में चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं, और ये सही से इलाज नहीं ले रहे हैं तो क्रोनिक अस्थमा हो जाता है और बाद में लेटर ऑन COPD में बदल जाता है।
0: जी, अस्थमा के अगर हम और कारणों पर विचार करें या ट्रिगर्स पर ध्यान देना चाहें तो और क्या हो सकते हैं?
1: बेसिकली एक्सट्रिंसिक होते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट हो गया, कोई एलर्जन हो गया, या फिर जो है माइट हो गया, या कोई फूड एलर्जी है, या कोई कलर से एलर्जी होती है किसी
0: कलर को, या पेंट से भी
1: होती है, तो ये सारी चीजें, और स्पेसिफिक किसी को साइट्रस फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को सरसों और हरी मिर्च से, बहुत सारे लोगों को होती है, और कर्ड से मिल्क एलर्जी भी काफी पाई जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा तो ठीक था साहब, जैसे ही जो है गाय का दूध पिया तो जो है इसके जो है ना दाने निकलने लगे, या अंडा खाया उसके बाद इसके जो है ना पूरे शरीर में रैशेस हो गए।
0: इस तरह के केसेस आपके पास लगातार आते हैं?
1: मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने काऊ एलर्जी का बच्चा एक बार देखा
0: जी।
1: 3 दिन का बच्चा था, काऊ मिल्क पिलाया, पूरे बॉडी में उसको आर्टिकेरियल रैसेस हो गए, और इतनी जल्दी यूजुअली मिलते नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना 3 दिन पे आर्टिकेरियल रैसेस थे, और उसको फिर स्टीरॉयड दिया गया, उसको अवॉइड किया गया काऊ मिल्क, और बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया।
0: जैसे अब किसी को अस्थमा है, जाहिर सी बात है मेडिकेशन लेगा, तो दवाएं क्या होती हैं, किस तरह से मेडिकेशन होता है। आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो इनहेलर्स देते हैं, शुरुआती प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं, और क्या इलाज होते हैं इसके?
1: बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो है दो तीन तरीके से इलाज होता है। एक तो फर्स्ट पार्ट यही है कि जो है एक्सपोजर को हम रोक दें।

0: अवॉइड एक्सपोजर। दूसरा, इसको रोकने के लिए जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो सीजनल एलर्जी, तो वो एक टावल लगाते हैं उसमें पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई करते हैं, वो सीजनल फिर अलर्ट जारी कर देते हैं कि अब आप जो है घर से ज्यादा ना निकलें, मास्क लगा के रखें, ठीक है, नहीं तो इसके पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा हैं एनवायरमेंट में, आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये अलर्ट जारी किए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में,
1: जहां पर ऐसी जो कॉटन मिल्स होती हैं, खासतौर पर मैंने वहां जैसे कोयम्बतूर जैसी जगह है वहां पे जो मिल्स होती हैं उनके इर्द गिर्द जो काम करते हैं वहां लोग या वहां रहते हैं उनको कभी कभी ऐसी एडवाइजरी जारी होती है।
0: कॉटन से एलर्जी काफी होती है
1: जी,
0: उसमें क्रोनिक इलनेस भी होती है, क्रोनिक लंग डिजीज भी होती है, सीओपीडी में चले जाते हैं, फाइब्रोसिस भी हो जाती है।
1: अच्छा, अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है?
0: अस्थमा बेसिकली सबसे अच्छा पार्ट यही है कि अगर जो है ना किसी को एलर्जी है और एलर्जन को हम उससे जीवन से निकाल दें, वो उसके टच में ना आए, तो बिल्कुल जिंदगी उसकी आम आदमी की तरह हम लोग हैं वैसे ही रहेगा, कोई कभी सर्दी जुकाम खांसी नॉर्मली नहीं होगा। बाकी अगर देखा जाए जैसे बार बार दिक्कत होती है, जैसे कोई अस्थमा के प्रकार होते हैं जैसे इंटरमिटेंट है, तो इंटरमिटेंट में बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 बार सप्ते में उसको डे में सिम्टम आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ या खांसी, तो इंटरमिटेंट बोलते हैं इसमें जो है जब भी हो तो उसको ब्रोंकोडायलेटर दे दिया जाता है, उसे आराम मिल जाता है। माइल्ड टाइप होती है कि ये जो है उसको 3 से ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं, सप्ते में 3 दिन से ज्यादा उसको खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो है चेस्ट टाइटनेस हो रही है, तो ये माइल्ड टाइप में आता है। और मॉडरेट टाइप जब वो डेली सिम्टम आ रहे हैं लेकिन वो अपनी एक्टिविटी कर ले रहा है, एक्टिविटी करता है तो एक्जर्शन पर दिक्कत होती है, थकावट पर उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। सीवियर वो होता है जब जो है बच्चा को बैठे बैठे भी दिक्कत हो रही है उसे, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जो होता है तो इसके ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, कुछ स्टेबलाइजर होते हैं, प्रिवेंटर होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं उसमें जो है साल्बिटामोल टर्बुटालीन यूजली यूज करते हैं, साल्बिटामोल के सिरप आते हैं जैसे एस्थालिन वगैरह है, टर्बुटालीन के भी बहुत सारे सिरप आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर इसका काम है एयरवे को फैलाना, लेकिन ये बीमारी को रोक नहीं रहा है,
1: आपकी जो सांस लेने की तकलीफ है वो रास्ता
0: उसको
1: रिलीव कर देगा।
0: अब दूसरा आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कम करने के कारण जो है उसको लॉन्ग टर्म आराम मिलता है। कुछ जैसे प्रिवेंटर होते हैं जैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और जो है दूसरा मोंटिलुकास्ट, ये जो है जहां से इनकी साइकिल एंटी इन्फ्लेमेटरी की साइकिल शुरू होती है उसको रोक देते हैं।
1: जैसे मतलब इन, वो बट बोलते हैं ना,
0: हाँ, जैसे एलर्जन गया एसिनोफिल पे एक्ट किया उसने, उससे बाइंड किया और वहां से जो है लिकोट्राइंस और साइटोकाइंस वगैरह रिलीज हुए, एंटी हिस्टामिन रिलीज हुए, तो उसको जो है ना वहीं पर रोक देगा कि ये लिकोट्राइंस रिलीज नहीं होंगे। दूसरा होता है कि जो सोडियम क्रम कीटोटोफिन वो जो है उसको प्रिवेंट करता है, क्या कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोलते हैं, तो मास्ट सेल से रिलीज होने वाले सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी रिजेंट हैं उनको सबको रोक देता है। तो वो ये दोनों अच्छे होते हैं लेकिन ये तभी कारगर होते हैं कि वो साइकिल उसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें लिकोट्राइंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिकोट्राइंस रिलीज हो रहे हैं, तो लिकोट्राइंस वाला मोंटिलुकास्ट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अगर जो है उसमें मास्ट सेल इन्वॉल्व हो रहा है तो मास्ट स्टेबलाइजर हो रहा है, लेकिन अगर जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर उसमें दिया जिसमें लिकोट्राइंस रिलीज हो रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा।
1: ठीक बात, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमको किस चीज के लिए क्या यूज करना है,
0: क्या यूज
1: करना, और उसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह है आपके लिए बड़ी जरूरी है। अपने आप से कहीं से आपको मेडिकेशन नहीं करना है,
0: बेसिकली अगर सेल्फ मेडिकेशन कारगर नहीं होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है ना, एक्यूट अटैक तो होते ही है, उसके साथ साथ हमारा काम होता है कि उसको बार बार दिक्कत ना हो। बच्चे बेसिकली क्या है, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई होती है, तो उसे बार बार दिक्कत होगी तो स्कूल में एबसेंट होगा बार बार, तो उसकी पढ़ाई में सफर करेगी, तो उसको जो है प्रिवेंशन के लिए हम उसको लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड देते हैं, इनहेलर बाया मल्टीडोज इनहेलर और बाया न्यूबलाइजर उसके थ्रू देते हैं।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बच्चों के लिए एक बीमारी भर तो नहीं है, ये उनके लिए एक चुनौती भी है जो उनके डेली जो रोजमर्रा की लिखाई पढ़ाई है उसको भी प्रभावित करती है, उनके खेलने कूदने को उसको भी प्रभावित करती है, और जो बच्चे बड़े हैं और जो सपने देख रहे हैं उनके सपनों को भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालती ही है।

0: अब अगर हम कहें कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है, उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगी।
1: बिल्कुल, अगर बार बार अटैक हो रहे हैं तो उसका मेंटली स्ट्रेस रहता है बच्चे को, और पेरेंट्स को स्ट्रेस रहता है कि बार बार दिक्कत हो रही है हमारे बच्चे को, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है, और जो है उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं ले पाता है, कुछ चीजें रोक दी जाती हैं उसकी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टी फैक्टर होते हैं कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं
0: नहीं
1: हो
0: होती।
1: पाती है।
0: आम तौर पे देखा ये जाता है कि बच्चों को इनहेलर अगर रिकमेंड किया जाता है तो उसको लेने में वो असहज महसूस करते हैं या झिझकते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पेरेंट्स बेसिकली बहुत ही सजग रहते हैं कि इनहेलर दिया है तो इसकी आदत न पड़ जाए, कितने दिन तक चलेगा, क्यों दिया, बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या, तो
0: तो
1: बहुत
0: ये जो
1: सारे।
0: साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर कहें या उसको कैसे किस तरह से आप
1: इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इनहेलर बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर अटैक रोकने के लिए। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टीरोइड हम देते हैं वो मिनिमम डोज में दिया जाता है और टारगेट पर दिया जाता है, ठीक है। सिस्टमिक इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते, लोकल साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होते हैं, वो तो अगर किसी को रोकना है, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, तो ये चीजें अवॉइड की जाती हैं। और हमारा टारगेट होता है कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और बच्चे को बार बार एब्सेंटिंग ना हो और बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
0: वो
1: अच्छा
0: प्रभावित ना
1: हो।
0: हो, तो ये जो इनहेलर की आदत लग जाएगी, ऐसा कोई भ्रम
1: ऐसा कोई
0: पालना।
1: भ्रम होता नहीं है। बेसिकली अगर जो है उसको बार बार अस्थमा हो रहा है, क्रोनिक अस्थमा की तरफ जा रहा है, सीवियर अस्थमा है, तो इनहेलर लीजिए आप, और इनहेलर का भी डाउनग्रेड करते हैं। जैसे किसी को सीवियर अस्थमा है, जैसे ही मॉडरेट में आता है, उसके बाद जो है माइल्ड एंड अप होता है, उसके बाद इंटरमिटेंट अस्थमा में आता है, जैसे ही इंटरमिटेंट अस्थमा में उसके सिम्टम आते हैं, वैसे ही हम इनहेलर को विड्रॉ कर लेते हैं और ब्रोंकोडायलेटर देते हैं।
0: जी, कार्यक्रम में इस मोड़ पर डॉक्टर साहब हम एक आपकी पसंद का गीत श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा वो गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
1: किशोर कुमार का कोई भी बढ़िया गीत,
0: आप अपनी पसंद का एक गीत गुनगुनाएं और हम श्रोताओं को आपकी पसंद का वही गीत सुनवाएंगे।
1: पड़ोसिन,
0: पड़ोसन फिल्म का
1: हाँ
0: मेरे
1: गाना चल
0: सामने वाली
1: रहा
0: खिड़की में, क्या बात है डॉक्टर साहब।
1: था। हाँ
0: चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।
2: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस हम आते हैं। अस्थमा किसी बच्चे को है और घर परिवार वाले, जाहिर सी बात है कि माता पिता हैं तो चिंतित तो होते ही हैं। क्या अस्थमेटिक किसी बच्चे को सामान्य तौर पे खेल कूद या उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, सामान्य जो जीवन है, वो क्या नहीं जारी रख सकता है?
1: नहीं,
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: कुछ है
1: नहीं
0: क्या?
1: है। पूरी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और सामान्य ही रहना चाहिए। बेसिकली आप प्रिवेंटर लेते रहिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते रहिए, इनहेलर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
0: ये बड़ा नॉर्मल सा
1: बेसिकली
0: है,
1: हाँ नॉर्मल है।
0: आपका एक जो सांस का रास्ता है वो अवरुद्ध अगर कहीं हो रहा है, उसको ठीक तरह से सांस ले सकें, उसके लिए ये प्रोविजंस हैं,
1: हाँ,
0: और
1: प्रोविजन,
0: उसको लेने में मुझे लगता है कि कोई
1: कोई
0: बड़ाई, कोई
1: परहेज नहीं
0: संकोच होना
1: करना
0: नहीं चाहिए।
1: चाहिए। इससे जो है आपका जीवन अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी और लॉन्ग टर्म जैसे उम्र बढ़ती है तो COPD क्रोनिक लंग डिजीज होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती
0: उन
1: है,
0: स्टेजेज में आप पहुंचने
1: वो
0: से बच
1: नहीं
0: सकते
1: जाएंगे,
0: हैं,
1: आप
0: उससे आप बच सकते
1: बच
0: हैं।
1: सकते हैं, नहीं तो बुढ़ापे पे आप हांफते रहेंगे।
0: तो इसमें अगर हम देखें तो स्कूल है या परिवार है जो बच्चे के इर्द गिर्द है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा ब्रोंकियल अस्थमा का है यार, उसको बार बार रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होती है या कफ है, पसली चलती है, तो ऐसे में अगर कोई बच्चा इनहेलर ले रहा है या कोई नेबुलाइजर ले रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म ना करें,
0: हाँ,
1: उसका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है?
0: उसको
1: ये
0: सपोर्टिव वे
1: नॉर्मल
0: में
1: है।
0: लेना चाहिए।
1: जैसे मेरी आई साइट वीक हुई तो मैंने चश्मा लगाया, तो अगर मैं देखता कि नहीं मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे पढ़ता,
0: ठीक बात
1: ठीक है, कैसे मैं डॉक्टर बनता, ठीक है? वैसे ही ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, आप ट्रीटमेंट लीजिए
0: तो उसको
1: और
0: सपोर्टिव वे
1: अपनी
0: में लेने की
1: सपोर्टिव वे
0: जरूरत
1: में
0: है, चाहे वो
1: लीजिए और
0: स्कूल हो चाहे
1: पॉजिटिव
0: परिवार हो।
1: पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको निगेटिव ना लीजिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल सरकार का जो फोकस है वो थीम जो है जाहिर करती है कि हर मरीज तक सस्ती और समान तरीके से इलाज की पहुंच संभव हो सके। हमारे भारत जैसे देश में आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना वो एक चुनौती है?
1: चुनौती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा का। मल्टीडोज इनहेलर आते हैं, MDI, वो काफी चिप भी आते हैं, काफी महंगे भी आते हैं, लेकिन जी ये जो फार्मेसी खुली हैं प्रधानमंत्री योजना
0: जी
1: के
0: जी जी
1: अंतर्गत,
0: जन आरोग्य योजना,
1: जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फार्मेसी खुली है, तो वहां जो है मल्टीडोज इनहेलर होते हैं, वो काफी चीप पड़ते हैं।
0: जी
1: अगर वो इनहेलर देखा जाए तो उसमें 120 डोजेज होती हैं, तो 120 डोजेज होती हैं, अगर एक पप सुबह शाम ले रहा है तो वो 2 महीने चलेगा,
0: बिल्कुल।
1: ठीक है? अगर वो एक बार ही ले रहा है तो वो 4 महीने चलेगा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है और मिनिमम साइड इफेक्ट हैं, और इस बीमारी को पाले ना आप जो है सही से इलाज कराएं, अच्छे
0: इसको इसको
1: डॉक्टर से
0: इसको
1: कंसल्ट
0: अपने
1: करें।
0: दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको एक सामान्य दिनचर्या की तरह देना है और सामान्य जीवनचर्या का एक हिस्सा भर है जहां आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, आपको उस एक पफ को लेके।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जैसा कि आपने बताया कि जन औषधि केंद्र जो हैं आजकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बड़े ही मददगार हो रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन तक, ग्रामीण और दूर दराज के जो मरीज हैं उन तक उपचार पहुंचाए जाने के लिए। अब हम आते हैं कि हमारी जो आजकल की जीवन शैली है बड़ी ही व्यस्त हो गई है, इस दिनचर्या में क्या ऐसे बदलाव हम कर सकते हैं जिससे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है या
1: इसमें
0: वो पा सकते
1: बेसिकली
0: हैं?
1: सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटेशन, घर के आसपास बिल्कुल सफाई रहे। सेकंड आता है कि पॉल्यूशन कम से कम हो। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफी ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करिए। तीसरा, कंस्ट्रक्शन साइट जो है कम से कम होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट
0: और
1: है तो
0: जो जो
1: प्रॉपर
0: गवर्नमेंट
1: उसका
0: नॉर्म्स होते हैं
1: नॉर्म का
0: उनको
1: पालन कर,
0: फॉलो करना भी
1: फॉलो
0: बड़ा
1: करना
0: इम्पोर्टेंट
1: चाहिए,
0: है,
1: जे वहां से जिससे धूल वगैरह ना आवे।
0: क्योंकि ये जो पोल्यूशन का आपने बात किया, मुझे लगता है कि पोल्यूशन जो है हम ही हैं जो पोल्यूशन फैला रहे
1: ह्यूमन
0: हैं
1: वेट,
0: और हम ही जो है उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। तो वी आर द पीपल हु नीड टू थिंक हाउ टू मीन्स कन्फ्रंट विद दिस
1: अगर देखा जाए
0: प्रॉब्लम।
1: तो जो है ना वेस्टर्न कंट्री में तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना साफ रहता है और ऑक्सीजन इतनी अच्छी है, ठीक है, वहाँ जो है लोग बताते हैं, मतलब फील करते हैं कि वहाँ जो है ना ताजगी सी

0: महसूस होती है। ताजगी सी महसूस सिर्फ इसलिए होती है कि जो है ना वहाँ प्लांटेशन बहुत
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है।
0: है।
1: सबसे
0: अच्छा,
1: बड़ी बात है कि हमारे
0: हाँ
1: यहाँ हिंदुस्तान चूंकि 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो आप उस चीज को वहां उससे तुलना अगर करते हैं तो वो फिर ठीक बात नहीं होगी। हमको किस तरह से हमारी परिस्थितियों में बेहतर करना है, और हमारी जो एक ज्ञान परंपरा रही है जिसमें योग और प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है, तो वो जो चीजें हैं हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को कम कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और योग प्राणायाम जैसी जो
0: हाँ,
1: विधाएं हैं प्राचीन परंपराएं हैं
0: योग
1: उनका
0: का
1: सहारा ले
0: बहुत
1: सकते हैं।
0: महत्वपूर्ण रोल है।
1: जी,
0: रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए, जो बाबा रामदेव जो प्राणायाम बताते हैं, जिसमें जो है सांस लेकर फेफड़े को फुलाते हैं, तो इससे वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग की बढ़ती है। और एक्सरसाइज में देखा जाए तो स्विमिंग, स्विमिंग में बहुत अच्छी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज मानी गई है। तो जिनको बार बार रेस्पिरेटरी दिक्कत
1: दिक्कतें
0: होती
1: होती
0: है,
1: हैं।
0: ब्रोंकियल अस्थमा है, क्रोनिक लंग डिजीज है, तो ऐसे लोगों को जो है प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और ये जो है क्या कहते हैं स्विमिंग वाला पार्ट भी करना चाहिए, जिससे जो है फेफड़े थोड़े से मजबूत रहें। और दूसरा, हम लोगों को अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो है ना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिप्लांटेशन हो रहा है। मैं देखता हूँ कि जो है किसी शहर में जब भी कोई कॉलोनी बनती है, बहुत सारे पेड़ उस खेत में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, सबसे पहले पेड़ पर आरी चला दी जाती
1: जी,
0: है। ये गलत है,
1: नहीं
0: पेड़ों को
1: गलत है,
0: बचा।
1: और
0: हाँ
1: उसके लिए
0: हाँ
1: व्यक्तिगत प्रयास के
0: हाँ
1: तौर पे एक यही कर सकते हैं कि हम
0: हाँ
1: ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे भी पेड़ लगाने की कोशिश करें,
0: हाँ
1: सिर्फ सरकारी प्रयासों के भरोसे रहना वो शायद हमारी भूल होगी।
0: इंडिविजुअल को,
1: प्रयास
0: सभी
1: जो है
0: को
1: करना
0: अपने
1: पड़ेगा।
0: प्रयास करने चाहिए।
1: एक
0: और
1: पेड़ माँ के नाम, एक प्रधानमंत्री जी का हमारे
0: बिल्कुल
1: यहाँ एक
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसमें।
0: हाँ बिल्कुल,
1: डॉक्टर साहब, अब एक सवाल और लेना चाहूंगा कि अस्थमाटिक अटैक किसी को अगर आता है तो इमीडिएटली क्या करने की जरूरत है?
0: जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आया है, तो ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक अगर सीवियर है, अस्थमेटिकस है, स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं, उसमें तो आपको तुरंत इमरजेंसी जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इनहेल्ड स्टीरॉयड है उस समय, इनहेलर है या सिरप है, तो वो घर पर जरूर दे दीजिए रास्ते में, जिससे जो है वहाँ अस्पताल तक
1: पहुंचने
0: पहुँच
1: में
0: सहायता मिले। ठीक है, अब जो है जब अस्पताल में पहुंच जाता है, तो सबसे पहले जो है ना एयरवे को हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स हो जाएगा तो उसको सांस लेने में आराम मिल जाएगा। फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर और एड्रिनलिन देते हैं अगर सीवियर अटैक है तो, जिससे जो है ना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम प्रिवेंटर देते हैं, स्टीरॉयड शुरू करते हैं।
1: जी, तो दोस्तों अस्थमा जो है एक चुनौती तो जरूर है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज और समय पर देखभाल अगर हम कर लें तो इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो हम सब मिलके आज ये संकल्प लें कि सही इलाज हर मरीज तक पहुंचे और हर सांस सुरक्षित रह सके। डॉक्टर नीरज यादव जी, आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था अस्थमा रोग, कारण, लक्षण और बचाव। मेडिकल कॉलेज आगरा में प्रोफेसर और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से अनिंद्र सिंह बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हों, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए इंडियन आर्मी।
1: हाँ, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहां पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में
1: याद है,
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया, वो एक फाउंडेशन बन जाती है।

0: और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो.
1: ओके.
0: और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो रगड़ा के साथ ही होती है.
1: ओके.
0: बेसिकली रगड़ा होता है एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स ऑफ कोर्स. वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी.
1: ओके.
0: इन बीएससी एंड बीए. Other than that, the subjects are all military science, military geography, and there are field exercises. Lekin hum jo NDA se jo hote hain, we are bonded so well. Mere WhatsApp group ka naam bhi bonded hai.
1: Okay.
0: Aur abhi bhi hum log retire ho chuke hain. People, my coursemates have been generals, brigadiers, but we still remain and talk like as if we were in NDA.
1: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उसके साथ उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070. कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए. आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
0: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
1: जी,
0: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको. मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी. वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं. और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
1: ओके. फौज में ही जाना है,
0: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
1: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में. बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहां.
0: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहां पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट. यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया.
1: सो इज दैट एडवांटेज और यू थिंक यू मिस समथिंग अगर सिविलियन एरिया में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंटोनमेंट्स और आर्मी स्टेशन आर इन द फील्ड एरियाज. सो फील्ड एरिया में तो यू हैव टू बी सेल्फ सफिशियंट, बिकॉज आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो तुम्हारे आसपास ही होनी चाहिए. मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है.
1: ओके.
0: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन. कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए.
1: ओके. मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
0: यस, बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली come to see so many places, a new place every 2 years, 3 years. And I really love that. And actually, very frankly speaking, I still love to travel because of that, perhaps, in, you know, thing which I've gone through. And after a while, mere father ne socha, bhai, bahut ghumna ho gaya bachchon ko, to mujhe hostel mein dal diya, A4 school mein. सुब्रोटो पार्क दिल्ली में.
1: ओह,
0: बोर्डिंग स्कूल.
1: टैप्स कहते थे उसे.
0: टैप्स. अब टैप्स हो गया.
1: पहले आपका और मेरा एक कनेक्शन है.
0: एफसीएस होता था.
1: ओके.
0: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है. एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज. लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
1: जी,
0: एंड एनडीए चले गए.
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं. अहमदनगर में आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी,
0: सबसे पहले. उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं.
1: ओके.
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
1: ओके.
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है.
1: ओके.
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे.
1: या,

0: 55, और उसके बाद देन T55 से हम T72 में ग्रेजुएट हुए,
1: जी
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था.
1: ओ
0: मैंने
1: वाह
0: अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T72 टैंक, एंड अब तो T90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड वर्जन्स.
1: अपग्रेडेड वर्जन से। सर टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना। सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: माई फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज द टैंक रेजिमेंट
1: ओके
0: आर्मर
1: डेकन
0: को, एंड आई ज्वाइंट द रेजिमेंट कॉल्ड डेक्कन हॉर्स,
1: हॉर्स
0: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द
1: वाह
0: प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड देन
1: ऑलराइट
0: इट वेंट थ्रू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट बिकेम रॉयल डेक्कन हॉर्स एंड देन द डेक्कन हॉर्स आफ्टर 1947. एंड वी हैड ए मुस्लिम स्क्वाडन इन बिफोर 1947.
1: अच्छा
0: आफ्टर पार्टीशन दैट स्क्वाडन वेंट इन टू पाकिस्तान इन ए रेजिमेंट कॉल द प्रोबिंस हॉर्स.
1: ओके
0: फॉर क्वाइट सम टाइम एक्चुअली स्ट्रेंजली वीज टू हैव अ कॉमन न्यूज लेटर ऑल्सो आई थिंक, वेयर प्रोबिंस हॉर्स सॉर्ट ऑफ बिकेम अ सिस्टर रेजिमेंट
1: ओके
0: दो इन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर.
1: ओके
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK, to attend the British officers who used to host
1: जी
0: their fathers or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So it's
1: सर
0: quite a
1: डेकन हॉर्स के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया, कुछ वो अंदर की आपके अंदर की भावना यू वांट टू शेयर विद अस।
0: यस आई वॉज ऑलवेज ए कैवलरी मैन. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी,
1: जी
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है एक टैंक्स होते हैं. जो
1: ओके
0: इन्फेंट्री होती है वो
1: जी
0: बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते, लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
1: जी
0: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं,
1: ओके
0: वो लीड करते हैं,
1: ओके
0: दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट,
1: जी
0: ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज व्हाट द टैंक्स डू. इट्स ए टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग।
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके
1: जी
0: जो पूना हाउस की,
1: जी
0: अरुण खेतरपाल
1: जी
0: पर,
1: जी जी
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर कपोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट
1: जी
0: बताता हूँ
1: जी
0: कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो
1: अच्छा
0: हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: विच इज T92
0: T72,
1: 72
0: T55,
1: ओके
0: T54 होते थे उसके
1: ओके
0: पहले, अब T90s. कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता
1: उसके
0: है.
1: पीछे भी कोई वजह कि आप
0: वेल
1: अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो।
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट, बहुत सारे गैजेट्स हैं. यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं,
1: गॉट इट
0: ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं, सो यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम. दिस लॉट ऑफ एम्युनिशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
1: राइट तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
0: सॉर्ट ऑफ
1: सॉर्ट ऑफ
0: डिजिटाइज, तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ,
1: देखिए
0: बट
1: सिविलियन हूँ सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: क्या पता आपके पास एक GPS है आपको अपनी लोकेशन अपना रूट आप देख रहे हो यू नेवर नो।
0: यस यस
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो
0: हाँ,
1: इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ
0: उनके
1: ऐसा
0: पास
1: जानना
0: एक
1: चाह रहा
0: रशियंस
1: था।
0: के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात,
1: ओके
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था.
1: जी
0: लेकिन अब तो यू नो GPS है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है,
1: ओके
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो, यू हैव इवन गूगल
1: एग्जैक्टली
0: मैप्स,
1: हाँ
0: यू हैव
1: वही वही मैं
0: एवरीथिंग.
1: जानना चाह रहा था आपसे कि
0: सो
1: पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ सोचिए हमारे टैंक्स हैं एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं आपने सारा जो प्लान है आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है
0: करेक्ट
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए।

0: या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
1: सी देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
0: ओके
1: कि क्या करना, कैसे करना है, कहां जाना. देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में मैप्स होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए.
0: जी.
1: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाड्रन होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स.
0: ओके.
1: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, एक ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ. दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
0: ओके.
1: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है. तो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर या जीओसी के साथ. उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है.
0: ओके.
1: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट फ्लैंक.
0: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली.
1: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी.
0: अच्छा.
1: देयर फ्लैंक्स आर देयर. देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है.
0: ओके.
1: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है जहां पर भी है, टैंक्स में, और यू टेल योर एयर फोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन.
0: ओके.
1: सो दैट द एनिमी इज बॉग्ड डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
0: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
1: हाँ.
0: उसके बारे में बात करेंगे सर. yes. क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में वो हैं मेजर एसके यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट?
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर सुदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम डू यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला

0: ऊपर से बंद है, अगर सील है
1: ओके
0: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
1: या
0: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को. सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इन साइड द टैंक.
1: ऑलराइट. हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं.
0: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है.
1: ओह वाओ. इट वाज
0: कॉल्ड ए कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
1: जी.
0: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट.
1: हाँ हाँ हाँ.
0: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है. तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक. द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड.
1: सर बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहां पे. बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहां जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं.
0: हाँ,
1: कि हिंद की सेना जा रही है.
0: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
1: जी.
0: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माई टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है हमारी, प्रैक्टिस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पर. दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड.
1: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज अ टफ ट्रेनिंग. इट इज नॉट लाइक चलो यार आओ प्रैक्टिस करते हैं. नो, इट्स लाइक दैट्स द रियल वॉर सिचुएशन.
0: रियल लाइफ सिनेरियो वॉर सिचुएशन क्रिएट होती हैं
1: जी
0: राजस्थान डेजर्ट्स में, और वहां जाकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं.
1: ओके सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ. बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहे हैं मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है. सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू?
0: नॉट नोन टू मी, बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन. एंड अहमदनगर का जो आमट को स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
1: जी,
0: वो एक सेंट्रल पॉइंट है. मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से.
1: ओके.
0: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट. क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
0: इट्स ए पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है उसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट. आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां. सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी.
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है. मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
1: ओके.
0: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस
1: जी जी.
0: एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन.
1: ओह.
0: एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह. रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे.
1: ओके.
0: और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे. और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे. तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो उसके जैसलमेर के आगे आसपास.
1: ओके.
0: बॉर्डर के टाइम
1: जी.
0: तो वहां पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे. तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना, नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और
1: आजकल भी रखते हैं.
0: रखते हैं वो
1: हम लोग रखते हैं.

0: बड़ी मुश्किल होती है नहाने से, पर कई
1: रखना
0: बार खो
1: पानी
0: जाते
1: जी।
0: थे कि भाई कहाँ जाना है, तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोर्स में हेलीकॉप्टर।
1: अच्छा
0: तो एक
1: दैट्स
0: हेलीकॉप्टर
1: फन।
0: नीचे निकला, उसमें
1: हाँ
0: से निकले सुंदर जी
1: ओ
0: एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री,
1: ओके
0: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ
1: जी।
0: का। तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाडन हियर। तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए। तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो
1: जी
0: मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर, बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक। तो अभी
1: अच्छा
0: आपने एमिंग की बात की, तो
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक

0: से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं कि थोड़ा, तो मैंने कहा नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ,
1: ओके
0: अगर यहां से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एम ऑफ लेना पड़ता है
1: गॉट इट
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
1: मूविंग व्हीकल पे
0: मूविंग
1: आपको
0: व्हीकल
1: कैसे
0: पे
1: स्ट्राइक
0: कैसे
1: करना है.
0: करना है।
1: या
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आर आर एम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है, एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे,
1: जी
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, आई विश
1: ओके
0: आई नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहां पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर
0: हाँ
1: करते हैं, कैन
0: करेक्ट,
1: वी कम बैक टू दैट?
0: यस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है, तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए, तो दैट इज एन अटेम्प्ट। उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है वहां
1: जो कि हुआ, मतलब
0: पे। यस
1: हमने देखा
0: यस बिल्कुल
1: वहां,
0: हुआ, यस
1: हमारे पीवीसी
0: यस
1: जो
0: यस
1: हैं
0: पीवीसी,
1: परमवीर
0: आप
1: चक्र से विजेता हमारे शो
0: यादव,
1: में भी आ चुके हैं,
0: यस यस एब्सोल्युटली।
1: संजय कुमार
0: और यही चीज जब पंजाब साइड जब प्लेन्स में होती है वहां
1: जी,
0: टैंक्स का रोल
1: वहां
0: होता है,
1: टैंक्स का रोल होता
0: क्योंकि
1: है.
0: वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आर्टी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है,
1: जी
0: तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे।
1: ओके
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं, तो
1: राइट
0: हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया,
1: बट
0: दैट इज
1: सर,
0: आवर प्लेस।
1: आज के टाइम में जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहां पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच
0: यू
1: अटैक्स?
0: सी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
1: जी
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर एंड वी हैड रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स, वी सेट ऑफ मिसाइल्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, द एयरक्राफ्ट शॉट देयर टारगेट्स विदाउट रियली क्रॉसिंग द बॉर्डर। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट गेम एंड आई वुड क्रेडिट दिस वॉर अ लॉट टू द इंडियन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी का रोल बड़ा हैवी था इधर, दे हैव दिस लॉन्ग रेंज गन्स एंड दे वर दे हैड देयर ओन टारगेट्स एंड दे वर डूइंग इट। मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में, शायद अगर वॉर 2-4 दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
1: ओके राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज, एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी हियर, एंड ऑफ कोर्स हम यहां पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्यानगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो वॉट ही मीन्स बाय दैट, बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम And that is something very sweet.
0: Yes.
1: Somebody
0: yes,
1: known
0: yes.
1: to you?
0: Yes. No, not known to me.
1: Okay.
0: But, you know, Vanakkam, I think, is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh rahe hain.
0: But he has the spirit. And
1: Sara kiya. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Tamil Nadu, Jai Bharat. And that's the spirit that we live with.
0: The cavalry regiment ko officers.

0: होते हैं, बट कैवेलियर बोल जाते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट।
1: ओके, सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: नो नो, इन इंटायर ऑपरेशन सिंदूर में ऑल आवर फाइटिंग आर्म्स वेदर द टैंक्स इन्फेंट्री दे वर इन ऑपरेशनल स्टेज।
1: जी,
0: छुट्टी लीव वॉज ऑल कैंसल्ड, वन डिड नॉट नो विच वे द वॉर वुड गो।
1: ओके,
0: एंड इनिशियल वॉर जो शुरू हुआ है दैट वॉज ऑल एज आई सेड एन एयरफोर्स वॉर, एन आर्टिलरी वॉर, द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री वॉज नॉट यूज बट दे वर ऑपरेशनली रेडी to go in should the orders come and they were absolutely ready to
1: okay go. मैं सीधे tough questions पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप tank regiment आप उसका अंग रह चुके हैं, you headed your own group, is it become more difficult now to step into the enemy zone इस modern era में?
0: You see, देखिए ऐसी बात है कि technology जिसके पास है I would say he is has an upper hand,
1: superior.
0: Yes.
1: Okay.
0: So apparently the Chinese did give them a lot of technology due to which there were some early they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that.
1: Ji.
0: But we are, dekhiye, technically and otherwise Pakistan is no match to the Indian army at all, and I'm saying this on air. There's no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
1: Sir, hume news on AIR ke madhyam se, hamari sarhadon ke paar, Fiji Island se lekar, Brazil, Canada, Europe, African continent, Asian continent mein suna ja raha hai. That's a bold comment, a statement that you've given.
0: I meant every word of it. And knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in Operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army means about.
1: Operation Sindoor hua, afsos ki baat hai na sir, aur ek tarike se hum anniversary mana rahe hain. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया, दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है। एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूं सर आपकी आंखों में, आह लाजवाब है सर, इसे सुनते हैं सर।
2: बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर करेगा। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे,
3: क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी।
2: यहाँ पे
3: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
6: Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था।
4: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
7: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
8: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
9: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
10: Just,
9: and it's
10: just
9: very,
10: to point out,
11: we're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
10: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
4: This was done.

0: You were happy with how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology, you are saying ki yehi superiority ab bata
1: rahe
0: hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहां से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स ए सिटी विच इज बीइंग टारगेटेड. सो it was downed, it was absolutely shot down. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished all.
0: You heard that?
1: Yeah, I mean they were saying abhi Delhi pe bombarded ho gayi hai, ye bombardment ho gayi hai. I mean all false fake news.
0: Sir, hamare traffic jam mein phasenge tab unhe pata lagega ki how difficult it is to go out from here.
1: Yes.
0: Anyway sir, ye to hum baat kar rahe hain operation sindoor ki aur ye charcha hum jari rakhenge.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 325 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर देर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो।

0: because it gives me a lot of retro music also. It gives me all sorts of music. So I like it. It's my favorite.
1: FM Gold भी है जिसमें
0: FM Gold है. So I like it.
1: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
0: देखिए रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशन्ड. हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था तब. ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो. इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था. हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें.
1: अच्छा, उनके गाने
0: उनके
1: हमारे भी जाते हैं सर,
0: हमारे भी जाते हैं. तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे.
1: जी,
0: वो जमाना था. सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली.
1: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें, कौन सा गीत प्ले करें?
0: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति नीति भल्ला.
1: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य हैं?
0: फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है. बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी.
1: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो
1: अहेड। एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके,
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहां पे हमारा एम्यूनिशन रखा होता है, वहां जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा,
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके,
1: सो माई मिस्टेक

0: was that I did not ensure that there were laces in the football shoes.
1: Ever.
0: So that I used to always remember.
1: But
0: And
1: it groomed you into a good individual, ना
0: yes,
1: सर?
0: exactly. NDA में also आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे
1: जी
0: टीच यू अदर देन दे टीच यू थिंग्स लाइक टेबल मैनर्स,
1: जी
0: कर्टसी, ओपनिंग द डोर फॉर द लेडी. टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर
1: वाओ
0: आपके सीनियर ने आपको देख लिया
1: जी
0: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
1: और
0: या
1: बोलेगा खाओ.
0: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ
1: यस,
0: भर, यू नो कि
1: बट आपको
0: मैनर्स क्या
1: प्रॉब्लम
0: होते
1: नहीं
0: हैं.
1: होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं तो,
0: काफी फौजियों को होती है, बट
1: है ना?
0: एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
1: हाँ,
0: इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
1: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
0: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
1: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए, बिल्कुल
0: हाँ,
1: नेचर से
0: एडवेंचर
1: बहुत प्यार
0: स्पोर्ट्स
1: करते
0: में
1: हैं
0: चला गया था,
1: जी.
0: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकेंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया,
1: ओ
0: एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, विच वी स्टिल डू. द कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वॉन्डरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
1: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
0: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द
1: ऑलवेज,
0: आर्मी
1: जब
0: डेज.
1: तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना
0: एब्सोल्युटली,
1: काम.
0: आर्मी डेज से ही. एंड इवन नाउ टुडे वी आई एम ए ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर ए हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स
1: और कोई
0: ट्रैक.
1: सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
0: नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन, दे
1: या
0: गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो
1: ओके.
0: टुगेदर
1: कुछ
0: इन माई ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
1: अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे, आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी, फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 ईयर्स, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
1: ग्रेट पॉइंट.
0: यू हैव टू कैच देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपलसरी आपको 5 ईयर या 3 ईयर्स की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
1: यस.
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू. एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो, कुछ
0: जब यंग
1: आपको?
0: ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इंप्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस, बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से
0: और
1: शॉटे
0: फिर
1: मारते थे. अच्छा.
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे, तो टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था.
1: बस.
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोज डेज.
1: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूं सर. आप ही की
0: श्योर
1: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है, कुछ
0: श्योर.
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश है ये बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस

0: केस टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं every weekend.
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर। माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहे तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं IPL के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे पासेस में, विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा IPL का। मैं नहीं सर, मैं देके रहूंगा।
1: विवेक यू अर्न्ड अ पास IPL पास इफ यू आर लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा।
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज।
0: वाओ।
1: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहां से सर?
1: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली। अगर आपने सुना रेवाड़ी तो सुना।
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए?
1: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स, यहां देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाह।
1: तो
0: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप।
0: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर, हंटर उड़ाते?
1: यस यस, ही वाज सीन द 71 वॉर।

0: is like Lord, yes.
1: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके
0: सुबह
1: अंदर?
0: सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा, और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा, और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
0: हाँ.
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
0: यस, आई गॉट ए CPL.
1: ऑलराइट, तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
0: सर, आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू UK.
1: ओके.
0: एंड कैंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है लेकिन आप अगर एक ये कर दो, अभी ना जाओ छोड़ करके.
1: हाँ हाँ हाँ, दिल अभी भरा नहीं. सर ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: आयदन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please so look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठन

0: और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वेत्री कड़गम तिविके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा।

श्रोताओं, आइए सभा का आरंभ करते हैं कार्यक्रम विवरण से, जिसमें हम आपको बताते चलते हैं कि आज की सभा में आपके लिए क्या कुछ खास है।

अभी से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम युववाणी सुर संध्या। युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30, जिसमें आज हम आपको

सुनवाएंगे दिव्यांश अग्रवाल से स्वाति जैन की बातचीत। विषय होगा स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और जिंदा रहिए।

श्रोताओं, शाम 6 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती पर वार्ता। सुनिएगा वार्ता डॉक्टर ओपी राजपूत की, विषय होगा सब्जी उत्पादन हेतु पाली हाउस की उपयोगिता।

रात्रि 7:10 पर कार्यक्रम होगा विविधा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित की वार्ता, पॉजिटिव इंडिया, निर्माण नए भारत का।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

पीला शिंदे की आवाज में आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे ए आर रहमान। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में पुकार फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ संगीत है ए आर रहमान का।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीत था A.R. रहमान का। इसी गीत के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का युवाणी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं अपेक्षा शाक्या को। और आज हम बात करेंगे फिटनेस, अवेयरनेस और थोड़ी नॉलेज बूस्टर के बारे में। दोस्तों, आज है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो यंग जनरेशन को एक्टिव रहने, फिट रहने और स्पोर्ट्स को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाने के लिए एनकरेज करता है। लेकिन हमारी शारीरिक गतिविधियों पर बात करने से पहले आर्थिक जगत से जुड़ा एक क्विक क्वेश्चन हमारे श्रोताओं के लिए। हाल ही में ओपेक से एक कंट्री ने विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री है? इसका जवाब हम देंगे लेकिन हमारे क्वेस्ट वर्ड सेगमेंट। और अब लौटते हैं आज के खास मौके की तरफ, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। दोस्तों, इस दिन का मेन एम है बच्चों और यूथ को स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर करना, उन्हें ये समझाना कि फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है। आज की फास्ट पेस्ड डिजिटल लाइफ में हम काफ़ी बिजी हो गए हैं। फ़ोन, लैपटॉप और स्क्रीन्स ने हमारी मूवमेंट को काफ़ी लिमिट कर दिया है। लेकिन सच तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप एक्टिव रहते हो तो मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है, फोकस शार्प होता है और ओवरऑल लाइफ प्रोडक्टिव लगती है। दोस्तों, रोज़ाना थोड़ा सा वॉक, रनिंग, योगा या कोई स्पोर्ट खेलना भी किसी स्ट्रेस बस्टर से कम नहीं होता। इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्यों फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग यूथ, थोड़ा सा डेली मूवमेंट आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। रेगुलर स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड फ्रेश रहता है। दोस्तों, आज के टाइम पे स्ट्रेस और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल एक और हैबिट्स हम सब में कॉमन हो गई है, जो है बिंज वॉचिंग। एक एपिसोड से स्टार्ट होता है और पता ही नहीं चलता कि कब पूरी सीरीज ख़त्म हो जाती है। इस चक्कर में घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ज़रूरी है कि हम स्क्रीन टाइम और मूवमेंट के बीच बैलेंस बनाएं, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हमें एक बेटर और एनर्जेटिक लाइफ देती है। इसी थॉट के साथ स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और ज़िंदा रहिए। इसी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारी खास भेंट वार्ता की तरफ। आज की खास बातचीत में स्वस्ति जैन बात कर रही हैं दिव्यांश अग्रवाल से, आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांश अग्रवाल, स्वागत है दिव्यांश जी आपका।
2: जी धन्यवाद।
1: दिव्यांश, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, जिंदा रहिए। तो चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से स्वस्थ होना क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या सही परिभाषा है?
2: जी, मेरी नजरों में एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने शरीर के स्तर पर, अपने मन के स्तर पर, अपनी आत्मा के स्तर पर और अपने भावनाओं के स्तर पर 100% एक्टिव हो। इंसान का स्वास्थ्य इन्हीं चार पहलुओं के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम शरीर के स्तर पर स्वस्थ रहने की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति डेली बेसिस पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, कुछ सूर्य नमस्कार करे, कुछ एक्सरसाइज करे, रनिंग करे और किसी ना किसी रूप से वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखे। अगर मैं बात करूँ मन के स्तर पर तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति डेली बेसिस पर अपने साथ कुछ वक्त बिताए, शांति में आँख बंद करके या फिर प्रकृति के बीच में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि

0: मन के स्तर पर हम अपने साथ जरूर समय बिताएं, क्योंकि शरीर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मन। एक बार को अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप मन से स्वस्थ नहीं होगे तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तीसरा जो है वो है आत्मा के स्तर पर। एक व्यक्ति का आत्मा के स्तर पर स्वस्थ होना का अर्थ यह है कि किसी ना किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से वो जरूर जुड़ा हो, किसी योग साधना से, किसी भक्ति साधना से, उसके कोई गुरु हो या फिर कुछ भी। मतलब आत्मा एक ऐसी चीज है जो कि आपको दूसरे डायमेंशंस का एक्सपीरियंस करा सकती है जो आपके नॉन फिजिकल होते हैं। इसके अलावा जो आपका चौथा जो आयाम है वो है भावनाओं के स्तर पर। देखिए आजकल कितने सारे लोग हैं जो इमोशनली अनस्टेबल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं और उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इमोशनल लेवल पर भी बैलेंस्ड हों, हमारे अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध हों और हम सबके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना के चलें। तो जो व्यक्ति इन चारों आयामों में स्वस्थ है वही सही मायनों में स्वस्थ है।
1: बहुत ही सही आपने पहलू बताए। चार पैरामीटर्स हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के, कि वो मन से भी स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो, आत्मिक तौर पर उसमें सुकून हो और भावनात्मक तौर पर भी उसकी भावनाओं पर वो ध्यान रखता हो। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। जो यूथ का जो परसेप्शन है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड है। हालांकि यूथ आजकल फिटनेस को लेकर कितना अवेयर है, सब लोग जिम जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्वस्थ नहीं है। आपके हिसाब से ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्यों हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिजल्ट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं?
0: देखिए ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं कुछ गिने चुने फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें से एक जो है वो है एकाकी जीवन। आजकल हम लोग अकेले पड़ गए हैं। जैसे बहुत से लोग बाहर जॉब करने जाते हैं तो वहां पर वो अकेले रहते हैं, तो उनके पास एक इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, माता पिता पीछे छूट जाते हैं, भाई बहन पीछे छूट जाते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में हम अकेले हो जाते हैं बाहर जाके। इसके अलावा भी जैसे मान के चलिए कोई बाहर नहीं रह रहा है इनकेस, तो भी फैमिलीज आज के टाइम में बहुत छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है। मतलब आजकल जो है ना एक अकोमोडेट नहीं कर पाते हम दूसरों की फीलिंग्स को, है ना, लड़ाइयाँ होती हैं। अगर एक बड़े परिवार में आप देखेंगे इससे बेहतर वो लोग सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, है ना। तो एक जो एकाकी जीवन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। देखिएगा आप डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाते हैं, अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि हमें नुकसान कर रहा है वो है आपका इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनियमित लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। हमारे ना सोने जागने का कुछ अता पता है, ना हमारे खाने पीने का अता पता है, हम क्या खा रहे हैं उसका भी अता पता नहीं है और कब खा रहे हैं उसका भी अता पता नहीं है। मतलब जो इल हेल्थ होती है वो तो स्वाभाविक सा एक उसका साइड इफेक्ट है। फिर आप खराब स्वास्थ्य को खुद ही न्योता दे रहे हो अगर आप इस तरह से अपने लाइफ को रेगुलेट कर रहे हो। रात को 3 बजे तक जग रहे हो, सुबह 4 बजे चाय पी रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहा है। कि आपने देखा होगा कि सारे लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, हमारी दिनचर्या बिल्कुल अनियमित है। तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो है आजकल का एक सोसाइटी का प्रेशर। हम बहुत ज्यादा एक रेस में लगे हुए हैं, पैसा कमाने की, सेटल होने की रेस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पैसा कमाने की दौड़ में सब इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि हेल्थ को बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते। तो हर कोई एक हसलिंग कल्चर जो जिसको कहते हैं हसलिंग कल्चर, जिसमें कि मतलब एक होड़ लगी रहती है, मतलब हमें सेटल होना है पैसे कमा के उसके बाद हम रिटायर होंगे। अरे तो भाई आप जिंदगी तो जियो, अभी जिंदगी तो आज जीने के लिए है ना, कल का कैसे पता है। आप अभी बाहर निकले और आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर आप क्या करोगे उस पैसे का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, आप सोसाइटी के दबाव में नहीं आइए। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप चार लोगों की चिंता छोड़िए। दूसरा एक रीजन ये भी है कि हम सेटल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी जो एक शादी वाली एज होती है निकल जाती है। जैसे कि बहुत सारे यूथ जो होते हैं वो कहते हैं बाद में शादी करेंगे, लेकिन बाद में जब हम शादी करते हैं कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति को 22 23 24 साल की उम्र से एक पार्टनर की नीड महसूस होने लगती है, लेकिन वो शादी करता है 35 साल की उम्र में जाकर। वो उस दौरान जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो अकेलापन होता है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट होता है, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मन से दुखी रहता है, तो ना वो सक्रिय रह पाता है, हेल्दी भी नहीं रह पाता है, और फिर वो जिंदा दिल भी नहीं रह पाता है, सबके चेहरे से लटक से जाते हैं। तो ये एक बड़ा दिक्कत का विषय है।
1: ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ये इंडिविजुअलिस्टिक जो नेचर हो गया है ह्यूमंस का, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं और उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने बड़ों से जुड़कर रहें, ताकि वो हमें समझाते भी हैं। हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे होते हैं तो वो उस पड़ाव से गुजर चुके होते हैं, तो उनके पास हमारे सवालों का बेहतर जवाब होता है। लेकिन हम क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक हो रहे हैं तो हम अपने इस इमोशनल फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसी वजह से हम फिर गलत आदतों की तरफ भी पड़ते हैं, जो फिर आगे जाकर भी हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम ये जो रिजल्ट्स हैं इनको पूरी तरीके से ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बेहतर जरूर कर सकें?
0: स्वस्ति मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज है, एक व्यक्ति

0: कर सकता है वो है अपना सोने और जागने का शेड्यूल फिक्स करना, एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना और एक पर्टिकुलर टाइम पे जागने का। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अनुशासन सबसे मेन है, स्लीप डिसिप्लिन और नेक्स्ट इज फूड डिसिप्लिन। व्यक्ति जो है वो अपने खाने की आदतों में और अपने सोने की आदतों में डिसिप्लिन लेकर आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मेरे हिसाब से एक जो पॉइंट है वो है योगा और मेडिटेशन और एक्सरसाइज। एक व्यक्ति डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करे, योगा करे, किसी ना किसी फॉर्म में मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, एक अच्छे टीचर से सीख कर, एक योग गुरु से सीख कर वो योगा और मेडिटेशन को जरूर ट्राई करे, क्योंकि वो आपको जिस लेवल का फ्रीडम देती है, जिस लेवल की आपको शांति देती है, वो आपको कोई और चीज़ नहीं देगी। आप चाहे जिम में कितने भी पसीना बहा लीजिएगा, लेकिन अगर आप योग और प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अलग ही लेवल का उससे फायदा मिलेगा। तीसरा मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो है एक इमोशनल कनेक्शन। देखिए आपके अंदर डेली बेसिस पर ढेर सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है ना, यू वॉन्ट दैट टू, आप उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो यू शुड हैव समवन जिससे आप बात कर सको डेली बेसिस पर, कम्युनिकेट कर सको, बिकॉज इंसान एक सोशल एनिमल है, राइट। देखिए हर कोई इतना केपेबल नहीं होता कि चीज़ों को अपने अंदर तक रखे, किसी किसी को मतलब ये होता है कि हम किसी से बात करें, कोई हमारी बात सुने, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सामने वाले का मूड खराब कर दो, मतलब उसको अपने सारा उस पर दुख अपना उड़ेल दो, लेकिन फिर भी आप एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। डेली 15-20 मिनट अपने लव्ड वन के साथ बातें करिए, अपनी माता पिता के साथ समय बिताइए, उनसे अगर आप बाहर रहते हैं तो कॉल पे बात करिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक पैशन अपना फॉलो करिए, किसी न किसी एक साइड हसल पर अपने फोकस करिए, जो भी आपकी है। अगर आप कुछ संगीत पसंद करते हो, पेंटिंग पसंद करते हो, तो आप उस पर थोड़ा सा काम करिए, वर्क करिए और उन चीज़ों के लिए टाइम निकालिए जो आपके लिए मायने रखती हैं।
1: ये जितनी भी बातें दिव्यांश आपने हमें बताई, ये केवल एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर है वो है पर्सपेक्टिव। हमें ज़रूरत है अपने नज़रिए में बदलाव लाने की। कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसको हमें टिक करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल जाहिर है कि रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, तो उसके लिए काम करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी 24 घंटे में से हम कुछ समय तो ऐसा निकाल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मन की खुशी के लिए हो। अगर हम 24 घंटे में से एक घंटा भी अपने शरीर एक व्यायाम को नहीं दे सकते, तो फिर ऐसा जीवन पॉइंटलेस है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारे जो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम होंगी। आपने जितनी भी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत जरूरी है इन बातों पर बात होना, और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
0: जी धन्यवाद
2: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे स्वस्ति जैन की दिव्यांश अग्रवाल से बातचीत, जहां हमने जाना हेल्थ, फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें कितनी इम्पोर्टेंट है। अब लेते हैं छोटा सा विराम, लेकिन याद रहे विराम का मतलब रुकना नहीं। थोड़ा सा उठिए, स्ट्रेच कीजिए और बॉडी को मूव कीजिए। हम जल्द ही लौटेंगे, तब तक स्टे एक्टिव, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम, जिसमें अभी हमने बात की फिजिकल एक्टिविटी के इम्पोर्टेंस के बारे में। और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ प्लस का, जहां हम बात करते हैं हेल्थ की, लेकिन थोड़ी अलग सोच के साथ। आज का विषय है डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी है। दोस्तों, जब हम डिहाइड्रेशन वर्ड सुनते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना है, लेकिन सच ये है कि जब तक हमें प्यास लगती है तब तक बॉडी ऑलरेडी सिग्नल दे चुकी होती है कि समथिंग इज ऑफ। सोचिए, हमारी बॉडी एक सिस्टम है, एक परफेक्टली बैलेंस्ड मशीन। इसका लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है, मतलब हर फंक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, इवन ब्रेन एक्टिविटी, सब पानी पर डिपेंड करता है। और जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि फोकस, मूड और एनर्जी सब इम्पैक्ट होते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि बिना रीज़न के आपको इरिटेट फील हुआ हो, या हेडेक, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप किसी काम में? कई बार ये स्ट्रेस नहीं, साइलेंट डिहाइड्रेशन होता है, और हम सोचते हैं शायद स्ट्रेस है या नींद कम हुई होगी, लेकिन कई बार रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। आज के टाइम में एक और प्रॉब्लम है, हम बिजी इतने हो गए हैं कि हम अपनी बॉडी सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं। मीटिंग्स, क्लासेस, फोन स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग और इन सब के बीच पानी पीना एक ऑप्शनल टास्क बन जाता है। और आयरनी तो ये है कि हम अपने फ़ोन को 20% पे आते ही

चार्जिंग केबल सर्च करने लगते हैं। लेकिन वहीं जब हमारी बॉडी 20% पे चल रही होती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि डिहाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिस्कनेक्ट है हमारे और हमारी बॉडी के बीच। इसलिए ज़रूरी है कि हम डिहाइड्रेशन को हैबिट बनाएं, ना कि रिएक्शन। मतलब सिर्फ प्यास लगने पर नहीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में कॉन्शियसली पानी पीते रहें। हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे सिंपल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पीना, दिन भर अपने पास एक वाटर बॉटल रखना, हर 1 से 2 घंटे में पानी पिए, और गर्मी के मौसम में फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा लें। और सिर्फ प्लेन वाटर ही नहीं, नारियल पानी, लेमन वाटर, छाछ और फ्रूट्स जैसे तरबूज, खरबूज, ये सब नेचुरल हाइड्रेशन बूस्टर्स हैं। और एक और ज़रूरी बात, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर बाहर टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे हाइड्रेट करें, क्योंकि जितना हम स्वेट करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जितना मूवमेंट उतनी हाइड्रेशन। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अपनी डेली लाइफ से निकल के दुनिया की तरफ, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है। आज हम क्वेस्ट वर्ड में बात करने वाले हैं ओपेक के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब नाम थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। इसी सवाल का जवाब आपको इसी सेगमेंट में मिलेगा। सोचिए, एक ग्रुप है कंट्रीज का जिनके पास ऑयल है, और वो मिलकर डिसाइड करते हैं कितना ऑयल प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा, और इनडायरेक्टली उसका प्राइस क्या होगा। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलकर अपनी पेट्रोलियम पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करती हैं। इसका मेन रोल होता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मैनेज करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना और एनर्जी मार्केट्स में बैलेंस बनाए रखना। लेकिन आज ओपेक सिर्फ इकोनॉमिक्स की वजह से न्यूज़ में नहीं है, बल्कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी चर्चा में है। रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट का अनाउंसमेंट किया है। आफ्टर मोर देन 50 इयर्स ऑफ मेंबरशिप, ये डिसीजन मई 2026 से इफेक्टिव माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने गैस किया था यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, तो आपका गैस बिल्कुल सही है। अब लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर मिलेंगे एक प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, आज की टिप, बेसिक चीजों को कभी बेसिक मत समझिए। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में कल शाम 5:30 बजे। आप सुन रहे थे अपेक्षा शाक्या को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है ग्राम्य लोक।

ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। और साथियों कैसे हैं? हमें पता है इस समय आप अपने खेतों में आने वाली फसल लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं। करनी भी चाहिए क्योंकि खेती में गर्मी की जुताई के बहुत फायदे होते हैं। खेतों की मेड़ बांधने का काम, खरपतवारों को नियंत्रित करने का काम, ऐसे अनेक काम होते हैं जो हम किसान गर्मी में करते हैं। साथियों आपको पता है आज विश्व एथलेटिक दिवस है। एक सफल एथलीट वो ही होता है जो मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास करता रहता है। जैसे हम किसान भाई, हम भी तो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हुए ना हम भी एथलीट। मित्रों आज हम किसान खेत में मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही अपनी खेती में आधुनिक कृषि उपकरणों को भी प्रयोग करने लगे हैं।

और सरकार भी यही चाहती है कि हम किसान अपनी खेती में आधुनिक उपकरणों को प्रयोग करें, क्योंकि इससे खेती में घंटों का जो काम होता है वो मिनटों में हो जाता है। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा भी बची रहती है और हमारा समय भी बच जाता है। इसीलिए सरकार आज मैकेनाइजेशन योजना चला रही है। साथियों, अब वो समय धीरे धीरे बदल रहा है जब खेती केवल हाथों की मेहनत से होती थी। आज मशीनों का सहारा लेकर किसान अपना काम जल्दी और बेहतर कर लेते हैं। आपने देखा होगा, अब खेतों में ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर और तरह तरह की मशीनें काम कर रही हैं। इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए सरकार मैकेनाइजेशन योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, ताकि खेती आसान हो सके और समय की बचत भी हो। मित्रों, पहले जुताई, बुआई और कटाई में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती थी, लेकिन अब मशीनों की मदद से वही काम कम समय में आसानी से हो जाता है। साथ ही इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी मिल जाता है। यानी यदि कोई किसान ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रे मशीन या अन्य उपकरण लेना चाहता है तो उसे कुछ आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। इससे छोटे और मध्यम किसान भी नई तकनीक अपना सकते हैं जो पहले उनके लिए कठिन काम था। मित्रों, आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बन गए, जहां से किसान चाहे तो किराए पे मशीन ले सकते हैं। इससे हर किसान को मशीन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों, मशीनों के उपयोग से मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और काम में सफाई भी आ जाती है। जैसे स्प्रे मशीन से दवा छिड़काव बराबर और सही मात्रा में होता है, जिससे फसल को पूरा लाभ मिलता है। मित्रों, मैकेनाइजेशन योजना में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे कृषि कार्य सरल बन जाए। इस योजना में किसानों को कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए 50% से 80% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। महिला किसानों को प्राथमिकता मिलती है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चला रही है, इसलिए ये निश्चित है कि इस योजना का लाभ पूरे देश के किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि भाई, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, तो ये तो है नहीं कि हमारे ही राज्य में है, किसी भी राज्य का कोई भी किसान हो इस योजना का लाभ वो ले सकता है। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने कृषि विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जानकारी लेने के लिए जाना होगा। वहां आपको बताया जाएगा कौन कौन सी मशीनों पर अनुदान मिल रहा है और आवेदन कैसे करना है। मित्रों, इस योजना से हम अपनी खेती को आधुनिक, लाभकारी और आसान बना सकते हैं। और भैया, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब काम आसान होगा तो हम किसानों का मन खुश रहेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी। मित्रों, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, जिन्होंने साहित्य, कला और समाज सुधार में अपना अतुलनीय योगदान दिया था, हमें प्रगति का रास्ता दिखाया। आज हमें भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, अपनी खेती को आधुनिक बनाना है, तभी हमारा गांव विकसित होगा। और हमारा गांव विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा। इसी अच्छी कामना के साथ आइए करते हैं कुछ मनोरंजन। सुनते हैं उषा शर्मा के सुरों में ये लोकगीत।

0: मैकेनाइजेशन योजना के बारे में अभी हमने सुना था लोकगीत, तो इसमें हमें खेती में बहुत लाभ होता है, अलग अलग कृषि यंत्रों को हम अपनाते हैं। ठीक वैसे ही हमें लाभ तब भी मिलता है जब पॉली हाउस को अपनाते हैं। आज हमारे बहुत से साथी पॉली हाउस को अपना कर खेती कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सब्जी उत्पादन करने में फसल को मौसम की मार से बचाया जा सकता है, साल भर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां उगाई जा सकती हैं और पॉली हाउस में उगाई गई सब्जियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिक जाती हैं, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम डॉक्टर ओपी राजपूत से जानते हैं सब्जी उत्पादन में पॉली हाउस के क्या उपयोगिता है।
1: उल्लेखनीय है कि विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा बड़ा स्थान है। अपने देश में कुल सब्जियों का क्षेत्रफल लगभग 80 लाख हेक्टेयर एवं सब्जी उत्पादन 1300 लाख टन होता है, जो विश्व की 8.6% सब्जी उत्पादित की जाती है। अपना देश विश्व में प्याज एवं आलू उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भी है, लेकिन भविष्य में यानी 21वीं सदी में सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाना होगा, तभी देश में तेज गति से निरंतर सतत बढ़ती 121 करोड़ जनसंख्या, वृद्धि दर 1.78% वार्षिक की बढ़ती भोजन मांग को पूरा किया जा सकेगा। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस की पॉलीथिन पर चूने का पतला लेप लगा देना चाहिए अथवा 25% भाग में शेड नेट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से पॉली हाउस का तापमान घट जाता है तथा पॉली हाउस की छत एवं साइड वेंटिलेशन खुला रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका पौधों की वृद्धि एवं विकास में बहुत अधिक होती है, लेकिन इसका उपयोग करने हेतु तापमान एवं प्रकाश का वातावरण में होना बहुत आवश्यक है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 500 से 1500 ppm होती है, अर्थात सांद्रता बढ़ाने हेतु दिन में सुबह 10 बजे तक पॉली हाउस का दरवाजा एवं वेंटिलेटर नहीं खोलना चाहिए। वर्षा के मौसम में पॉली हाउस की सांद्रता और बढ़ती जाती है, इसको कम करने के लिए पॉली हाउस का वेंटिलेशन खुला रखना चाहिए और सिंचाई कम करनी चाहिए। वर्षा के मौसम के अलावा गर्मी के मौसम में कम से कम 3-4 बार सिंचाई करना, टपक बूंद या बूंद बूंद कर सिंचाई पद्धति को 5 से 8 मिनट के लिए चलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बरसात और शरदकालीन जाड़े विंटर सीजन के मौसम में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जिला उद्यान विभाग द्वारा पॉलीथिन के निर्माण हेतु विशेष छूट 40% जो लागत की है उस पर दी जाती है। इसके साथ साथ कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, अतः क्षेत्रीय कृषकों को सब्जी फूल एवं औषधीय फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें 1000 वर्ग मीटर अधिकतम क्षेत्रफल खेती हेतु पॉली हाउस की लागत पर 40% की छूट है, जो लागत 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर आती है, जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर पॉली हाउस का होना चाहिए। शेड नेट पर 50% लागत में छूट अधिकतम 3500 प्रति 500 वर्ग मीटर के हिसाब से मिलती है। प्लास्टिक पर 50% लागत में छूट

अधिकतम 5,000 रुपए प्रति 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु है। पॉली हाउस आधारित सब्जी उत्पादन क्यों करें? आखिर इसकी आवश्यकता ये है कि वर्तमान में कृषि में उर्वरकों, रसायनों, कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसके मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनके प्रयोग पर नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। तभी जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जा सकेगा और सब्जियों के दामों में अच्छी और शुद्ध गुणवत्ता से कृषकों को बिक्री का अधिक लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय संतुलन से 4 गैसें मुख्यतः से निकलती है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन यानी CFC। इन गैसों के द्वारा पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, जिसके नियंत्रण की एक महती आवश्यकता है। अतः पॉली हाउस आधारित खेती अपनाई जाए। जल, जमीन और वायु अर्थात 3J सूत्र जो है, जल, जमीन, जलवायु को संरक्षित रखना होगा। इससे प्राकृतिक पूंजी का निर्माण होता है। पॉली हाउस में पॉलीथीन सीट प्रायः हरे रंग की होती है, जो सूर्य की तेज रोशनी या गर्मी को सहने में वृक्ष की भूमिका निभाती है। क्योंकि वृक्षों का कटाव बड़ी तेजी से हो रहा है, अतः इसको रोकना चाहिए ताकि बंजर और ऊंची भूमियों में हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। और संतुलित वातावरण के लिए 33% भूभाग में वृक्षारोपण होने चाहिए। भोजन में सब्जी की महत्ता। सामान्य कार्य करने वाले वृद्धों को आहारी आवश्यकता हेतु महिला एवं पुरुषों को 125 ग्राम हरी सब्जी प्रतिदिन, 75 ग्राम अन्य सब्जियां, 75 ग्राम कंद एवं मूल वाली सब्जी, कुल मिलाकर 275 से 300 ग्राम हरी सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को चाहिए। क्योंकि सब्जियों से हमें प्रोटीन, विटामिन ABCD, लोह तत्व, कैलोरी आदि हमको मिलते हैं, जो पोषकीय तत्व है। पॉलीथिन हमें जो है इसमें पॉली हाउस में जो प्रयोग की जा रही है उस पर आधारित उत्पादन हम ऐसे लें, उसके लिए जैव उर्वरकों वायु फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, जिसमें एजोटोबैक्टर, राइजोबियम कल्चर, एजोस्पाइरिलम, PSB, ये उर्वरक हमें देने चाहिए, ताकि हम जो है कद्दू वर्गीय सब्जी या लौकी, तोरी, कासी फल, करेला में एजोस्पाइरिलम, चना, मटर, मसूर, लोबिया में राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर जो है हमें सब्जियों में जैसे भिंडी है, टमाटर है, आलू है, इनमें प्रयोग करना होगा। सब्जी फसलों की संस्तुत प्रजातियों में हमको चुनना चाहिए जो हमारी वर्षाकालीन या शरदकालीन एवं जायद वाली मौसम में जो सब्जियां उगाई जाती है, उसमें सेम की पूसा अर्ली प्रोलिफिक, रजनी, मिर्च की पूसा ज्वाला, कासी अनमोल, टमाटर की पूसा सदाबहार, पंत सम्राट बैंगन की, भिंडी की परवनी क्रांति, फूलगोभी की पूसा दीपाली और लौकी की पूसा बहार, हम इन सब्जियों को लें। और जहां तक खरपतवार का नियंत्रण का सवाल है, खरपतवारों को समय समय पर निकाल देना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण हेतु क्यारी की गुड़ाई करें। और इसके अलावा जो कीट नियंत्रण है, हमें देसी तकनीक जैसे नीम का तेल, जिसे साबुन में घोल करके हमेशा 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें। माहू के नियंत्रण के लिए हम इंडोसल्फान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर पौधों पर छिड़कें। सूत्रकृमि नेमेटोड्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम जो है कारोफिरोन 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से छिड़कें। कीट नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफॉस का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में हम ये बात कहना चाहेंगे कि सब्जियों की नई उन्नत प्रजातियां एवं संकर किस्मों का ही चयन करें, जैसे लोबिया की अर्कासुमन बताई, सेम की रजनी, ग्वार की पूसा सदाबहार, मिर्च की कासी अनमोल, भिंडी की परवनी क्रांति। नई विकसित कृषि प्रणालियों में जिस वह सिंचाई में है, ड्रिप सिंचाई या टपक बूंद सिंचाई, या हम स्प्रिंकलर सिस्टम, पाइप सिस्टम में से इन तीनों को ही हमें प्रयोग करना होगा, ताकि हम 35 से 40% सिंचाई की बचत कर सकें, साथ ही अच्छी उपज लें। जैव उर्वरकों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, PSB और BGA आदि का हम बीजोपचार सब्जी पौध रोपण के समय हम करें, और जिससे वायुमंडल में जो 79% नाइट्रोजन स्वतंत्र है, उसमें से हम 15 से 20% नाइट्रोजन बगैर खर्च के संचित कर सकते हैं। जहाँ तक जीवांश एवं जैविक खेती की बात आती है, हमें उसके लिए FBM यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कल्चर यानी केचुआ खाद को प्राथमिकता देनी होगी। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। दलहनी सब्जियों में फसलों जैसे ग्वार है, सेम है, लोबिया है, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का तत्व का अनुपात 1:2:1 में रखें, और जीवांश खाद एवं उर्वरकों को 50:50 में दें। कीट नियंत्रण के लिए नीम की निवोलियों का प्रयोग करें, और पॉली हाउस में गंदी हवा को निकालते हुए एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेटर्स का प्रयोग करें। बाजार में सब्जी सप्लाई समय समय पर प्लास्टिक

0: वैक्स हेवन टोकनी के द्वारा करें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में पॉली हाउस आधारित जैविक खेती से सब्जी उत्पादन बढ़ाएं, कम क्षेत्रफल में कम लागत में अधिक मुनाफा और बाजार में हर पूरे वर्ष भर सब्जी सप्लाई कर फायदा उठाएं। ध्यान रहे यह पद्धति महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करेगी, रोजगार के 100 अवसर प्रदान करेंगे, लाभदायक रहेगी। चूंकि कृषक अन्नदाता है अतः किसान की सेवा ईश्वर की सेवा है, यानी टू सर्व द फार्मर इज टू सर्व द गॉड।
1: साथियों अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर ओपी राजपूत। आज के समय खेती में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। आलू भंडारण करने वाले कोल्ड स्टोरेज में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रयोग किया जा रहा है। पुराने सिस्टम में वर्तमान की सटीक निगरानी बहुत मुश्किल से हो पाती थी, लेकिन अब IoT ने इसे बदल दिया है। साथियों IoT इंटरनेट पे चलने वाले छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं और ये डिवाइसेस हम बहुत सारे कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल्स में हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है, हॉस्पिटल है, रेलवे है और उसी प्रकार अब हम कृषि क्षेत्र में भी इसको प्रयोग करने लगे हैं। आज कोल्ड स्टोरेज के अलग अलग कोनों में स्मार्ट सेंसर लगाए जाते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में तापमान का डेटा इकट्ठा करते हैं और जैसे ही तापमान में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर के मोबाइल पे अलर्ट भेज दिया जाता है। इससे आलू के सिकुड़ने या अंकुरण की समस्या से बचाव किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज में कार्बन डाइऑक्साइड भी नियंत्रित रहती है। इससे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमें तो पता ही है भैया कि आलू अंदर से क्या होगा, काला पड़ जाएगा। तो है ना भैया कमाल का आविष्कार, खेती में भी अब IoT प्रयोग करने लगे हैं। तो साथियों इसी के साथ अब चलते हैं, जान लेते हैं आगरा मंडी भाव को, जिसमें टमाटर का भाव है 600 से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 900 से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 3500 से लेकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल और आलू का भाव है 500 से लेकर 600 रुपये प्रति क्विंटल। तो साथियों मंडी भाव के बाद अब समय हो चला है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं मिथिलेश के सुरों में ये लोकगीत।

0: और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्स लाइफ बढ़ाएंगे, विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम। क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहां फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE के सचिव डॉ ML जाट भी उपस्थित थे। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। एक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यह हादसा कल रात हुआ था, जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने और दुर्घटना के कारणों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। वहीं अयोध्या में आज सरयू नदी में स्नान के दौरान 5 श्रद्धालु गहरे पानी में डूबने लगे, जिनमें 2 को जल पुलिस ने बचा लिया जबकि 3 अभी भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के काना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कल भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं महोबा में आज आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत आज से स्वगणना शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनगणना समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार। मुख्यमंत्री ने आज सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के काना स्टेडियम में आज खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश इसे लेकर आज आई है आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी। श्रोताओं, क्या हालचाल है आप सबके? देखिए, इस बार स्वास्थ्य के साथ साथ उस माहौल और उस आपके मन में उठने वाले उन तरंगों के भी हालचाल मैं पूछ रही हूँ जो चुनावी रिजल्ट्स के बीच उठ रहे हैं। भाई, कई जगह चुनाव हुए हैं, हमारे देश का हर जागरूक इंसान वोट तो किए होंगे बदलाव के लिए, सहयोग के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक वोट कितना पावरफुल है, खासकर हमारे देश की युवा एनर्जी होना भी चाहिए। आखिर युवा ही तो हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं युवा पीढ़ी की बात करने वाले हैं जो सुबह उठते ही भगवान दर्शन के पहले मोबाइल दर्शन करते हैं, जो इतनी क्रिएटिव है कि एक तरफ ऐसे रील्स बनाती है जो आपको हंसाए तो दूसरी तरफ देश बदलने की बात भी करें, कभी इतनी गंभीर बात करें कि हम भी सोचने लगे

कि भाई बात तो सही कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी अजीब सी रील्स बनाए कि पूछने का मन करे कि ओ भाई तू ठीक तो है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आगे भी बात करेंगे, पहले एक गीत सुन लेते हैं क्योंकि ये जो विषय है आज खलबली मचाने वाला है।

श्रोताओं, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्यों? इस क्यों में ही हर समस्या का हल छिपा हुआ है। आज की पीढ़ी डकियानुसी सोच पर उंगली उठाती है। लड़का क्यों नहीं रो सकता? मैं कहा जाता है ना कि लड़के तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो रो नहीं सकते हैं। रोने का काम तो लड़कियों का है। लड़कियां ही क्यों देर रात तक घर से बाहर नहीं रुक सकती? जितने क्राइम होते हैं उनमें सहयोग तो लड़कों का भी होता है, तो लड़के क्यों देर रात तक घर से बाहर रुके? क्यों हर इंसान का डॉक्टर इंजीनियर होना ही सफल होने का पैमाना है? भाई, अगर हम किसी को बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम किसी जॉब का भी नाम लें, तो सामने वाले के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि डॉक्टर इंजीनियर थोड़े ना है, क्या मतलब है इसका? क्यों मानसिक स्वास्थ्य पर बात नहीं होती है? क्यों छोटे मोटे स्ट्रेस को या डिप्रेशन को पागलपन का नाम दिया जाता है? आज की पीढ़ी इंटरनेट के दौर में है श्रोताओं। यहाँ दुनिया किताबों से हटकर मोबाइल में है। जेंडर इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जो कहा है वही करो, नहीं, आज की पीढ़ी अपना हक अपना अधिकार मांगना और लेना दोनों जानती है। आज के युवा सर झुकाकर जी कहने वालों में से नहीं है। ये तर्क करते हैं, बहस करते हैं, सिस्टम को देखते भी हैं और समझते भी हैं, कंपेयर भी करते हैं, संभावनाएं तलाश करते हैं, बेहतर होने की संभावनाएं तलाश करते हैं। आज की पीढ़ी जिंदगी काटना नहीं, सम्मान के साथ जीना चाहती है। इन्हें आलोचना भी सुनने को मिलता है, तमाम तरीके की, कि आजकल के बच्चे तो बिगड़ गए हैं, मोबाइल ने सबको खराब कर दिया है, रील्स वाली पीढ़ी है, इन्हें दिमाग नहीं बस मोबाइल चलाने आता है। लेकिन क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता। आज की पीढ़ी सोच रही है अपने बारे में, देश और समाज के बारे में, उस डर से निकलने की कोशिश में कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं। आज की पीढ़ी सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान भी चाहती है, आज़ादी चाहती है, और सबसे बड़ी चाहत कि उन्हें भी सुना जाए, उन्हें भी समझा जाए। तो यहाँ पे एक और विराम लेते हैं और सुनते हैं वो गाना जिसमें हक की बात हो रही है। सड्डा हक एथे रख।

श्रोताओं, एक समय था जब दुनिया घूमने के लिए जेब में ढेर सारा पैसा होना चाहिए था। अब सिर्फ इंटरनेट पैक, अच्छा सा नेटवर्क और आप बेडरूम में बैठे अपने वक्त के हिसाब से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, मैंने सोशल मीडिया ओपन किया। कोई एक इंसान जिसे मैं वहाँ पे फॉलो करती हूँ मलेशिया घूमने गया है, उसने मुझे पूरा मलेशिया घुमा दिया, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। क्या खाना चाहिए, कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कैसी सड़कें हैं, क्या बोल चाल है, कितने पैसे लगे उसको वहाँ आने जाने में और क्या क्या देखा जा सकता है। अब बताओ, मैं मलेशिया ना भी जा सकूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, घूम तो लिया ना मैंने, छोड़ो क्या ही है। लेकिन हाँ, दिल तो चाहता है कि मैं भी घूमने जाऊँ। अब तक इंटरनेट के चक्कर में बैठी रहूँगी, लेकिन हाँ, आज मैंने मलेशिया घूम लिया।

श्रोताओं, पहले नासा विदेश में जाकर पढ़ाई करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इंटरनेट के साथ साथ सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है कि हम घर बैठे अपने सपने को पूरा कर सकें। टिकट बुक करना, बिजनेस स्टार्ट करना, पलक झपकते ही अपने हर सवाल का उत्तर पाना, ये सब कुछ आज मुमकिन है। आज मुमकिन है कि घर बैठे खाना मंगा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, हर वो सामान जिसकी आपको ज़रूरत है आपके एक क्लिक पे आपके पास है। लेकिन कहते हैं ना कि हर वो चीज़ जिसका इफ़ेक्ट होता है साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आज युवाओं में सब्र नहीं है, कन्फ्यूज़न है। मोबाइल आदत नहीं, वायरस बनता हुआ ज़रूरत बन गया है। अब हम सोचने में लगने वाले वक्त को, समय को बर्बाद करना कहने लगे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से अलग रहने लगे हैं। मानसिक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी बीमार रहने लगा है। श्रोताओं, आज की पीढ़ी दिखावे में यकीन करने लगी है, एक दूसरे से आगे निकलने की सोच ने एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सबको बढ़ावा दिया है। नींद गायब है, सुकून गायब है, लाइफ फेक है। दबाव जैसे लाइफस्टाइल बन गया है, हर समय प्रेशर, खोखली जिंदगी। मोटिवेट करते करते, उनके रील्स बनाते बनाते आज की पीढ़ी खुद ही डिप्रेशन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात डरने की नहीं है, बस बैलेंस बनाने की है। आज की पीढ़ी समझदार तो है ही है, खुद को संतुलित बनाए रखें, खुद को बदलते हुए, समाज को बदलते हुए ख्याल भी रखें, सबकी भलाई सोचिए, सबको साथ लेकर चलिए। श्रोताओं, हम सबका कर्तव्य है इस बदलाव को स्वीकार करने का। आलोचना के बजाय आलोचक बने। हमारी युवा पीढ़ी भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे ऊपर है।

श्रोताओं, घड़ी की सुई कह रही है कि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करूं और आपसे लूं विदा। फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और ये कार्यक्रम है शाम में गजल की। आइए सफर करते हैं 8 बजे से लेकर 8:30 तक गजलों के दौर पे। तो सुनते हैं सबसे पहली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में, साथ साथ फिल्म का। इस गजल को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है कुलदीप सिंह का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत। संगीत था मदन मोहन का और फिल्म का नाम था मौसम। उमराव जान, इस फिल्म में सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में शहरयार का लिखा गीत। संगीत है खयाम का।

मासूम इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत संगीत था आर डी बर्मन का। शामी गज़ल फिल्म की आखिरी पेशकश हंसते जख्म फिल्म से। आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की है। गीत को लिखा है कैफ़ी आज़मी ने और संगीत है मदन मोहन का।

हंसते जख्म फिल्म की में लता मंगेशकर की गाई इस गजल के साथ ही शाम गजल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में आशा भोसले के गाए अनजान के लिखे इस गीत को। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

लहू के दो रंग, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फारिक कैसर का लिखा गीत, संगीत था बप्पी लहरी का। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं परवीन सुल्ताना की आवाज में फिल्म कुदरत का वो गीत जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके सीमा पार से

0: आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
0: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रीकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।

0: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज

0: भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. And now the news in detail. The nation today saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said today, "The nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers." Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said, "The country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem." Mr. Modi said, "The Indian armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation." He said the forces gave a befitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also honoured the valour and sacrifice of the Indian armed forces on the anniversary of Operation Sindoor. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson

0: बेगुनाह भारतीय शहरियों पर हमला करने की जुरात की थी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ह फौज की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तिलात नशात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ह फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। भारत ने आज कहा कि उसने सरहद पार की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरहद पार की दहशतगर्दी को तवील मुद्दत से मुल्क की पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: गैर कानूनी बांग्लादेशियों की वतन वापसी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि कौमियत की तौसीख के 2,800 से ज्यादा मामलात बांग्लादेश के साथ इल्तवा में हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर क्याम पजीर किसी भी बैरूनी बाशिंदे को मुल्क के कवानीन जवाबित के मुताबिक उसके वतन वापस भेजा जाना चाहिए, उसके लिए बाहमी तरीकेकार और बंदोबस्त कायम करने चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2,860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी ग्रुपों से मुतालिक तर्जुमान ने कहा कि भारत ने इंतहा पसंद और अलाहदगी पसंद अनासिर के जरिए महफूज ठिकाने के तौर पर कनाडा की सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक तश्वीश के बारे में मुसलसल आवाज उठाई है। नई सरकार तश्कील देने की तैयारियों के दरमियान मगरी बंगाल कानून साज असम्बली को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया है। गवर्नर आर एन रवि ने आईन की दफा 174 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आज मौजूदा असम्बली को तहलील करने के अहकाम जारी किए। ये इख्तदार की तब्दीली में एक नुमाया इकदाम है क्योंकि रियासत सनीचर के रोज हलफबरदारी के जरिए नई सरकार की तश्कील की जानिब गामजन है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के एमएलए सुविंदु अधिकारी के करीबी साथी चंद्रनाथ रथ के कत्ल के सिलसिले में रियासती पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक 7 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी भी तश्कील दी है। ये टीम सीआईडी के इंस्पेक्टर जनरल के तहत काम करेगी। इसी दौरान पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में सिलीगुड़ी के एक रिहायशी को हिरासत में लिया और तहकीकात की। उसके कार की नंबर प्लेट को मुबैना तौर पर उन हमलावरों के जरिए इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने कल रात चंद्रनाथ रथ को कत्ल किया। तकरीबन 3 घंटे की तहकीकात के बाद पुलिस ने उसकी तरफ से इस यकीन दहाने के बाद उसे रिहा कर दिया कि वो मजीद तहकीकात में ताउन और मदद करेगा। तमिलनाडु में सियासी तातुल के दरमियान नई सरकार तश्कील देने के लिए बातचीत जारी है। इस सिलसिले में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज चेन्नई में टीवीके के सर सी जोसेफ विजय को लोकभवन मधु किया। लोकभवन से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मीटिंग के दौरान गवर्नर ने यह बात वाजे की कि तमिलनाडु कानून साज असम्बली में मतलूबा अक्सरियती हिमायत जो सरकार तश्कील देने के लिए लाजमी है मौजूद नहीं है। केरलम के नए वजीर आला के बारे में फैसला नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के जरिए किया जाएगा। वो ये फैसला एआईसीसी मुशाहिदीन के जरिए पेश करदा रिपोर्टों पर सलाह मशवरे के बाद करेगी। केपीसीसी के सदर सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर को मुंतखब करने के लिए एआईसीसी के सदर को इख्तियार देने की करारदाद को आज सुबह तिरुवनंतपुरम में मुनाकिदा कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: आज की कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में एआईसीसी के उन मुशाहिदीन ने शिरकत की जो गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली से यहां पहुंचे थे। मीटिंग से कबल और बाद में मुशाहिदीन ने 2 मुंतखब कांग्रेस अरकान के साथ तबादले ख्याल किया। جس کا مقصد قیادت کے معاملے پر ان کے نظریات کو

0: हासिल करना था। केपीसीसी के सदर सनी जोसेफ ने कहा कि ये मुजाहिदीन जो दिल्ली वापस जाएंगे पार्टी की कौमी क्यादत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वीडी सथीसन और रमेश चिन्नीथला समेत सीनियर लीडर उन कांग्रेस एमएलएज में शामिल हैं जो इस मरतबा मुंतखब हुए हैं। इसी दौरान एक और सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल इस वक्त रुकने पार्लियामेंट हैं। एआईसीसी के मुशाहिदीन ने यूडीएफ की मुख्तलिफ शरीक पार्टियों के साथ भी आज तबादले ख्याल किया। सियासी जराए ने इंदिया दिया है कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर और नए वजीर आला से मुतालिक फैसला इस हफ्ते के अख्ताम तक किए जाने की तवक्को है। इसी दौरान हलफबरदारी की तकरीब गवर्नर के चेन्नई से वापस आने के बाद ही होने की तवक्को है। गवर्नर इस वक्त वहां तमिलनाडु से मुतालिक सरकारी कामकाज में मसरूफ हैं। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे की वजारत ने आज ऐलान किया कि ट्रेनों की अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में मुंतकली का आगाज अगस्त में होगा। नई दिल्ली के रेल भवन में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि 40 साल कदीम रिजर्वेशन निजाम से अपग्रेडेड निजाम में ट्रेनों की मुंतकली के दौरान मुसाफिरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1986 में इब्तदाई तौर पर मुतारिफ किए गए रिजर्वेशन के मौजूदा निजाम में पिछले 40 सालों में बहुत सी छोटी छोटी तब्दीलियां की गई हैं। अलबत्ता इसकी मुकम्मल तौर पर ओवरहॉलिंग की जा रही है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसकी सलाहियत में नुमाया तौसी की गई है। भारतीय रेलवे में 2002 में इंटरनेट पर मबनी टिकटिंग के आगाज के बाद से बड़े पैमाने पर डिजिटल तौर पर अक्सर तब्दीली आई है। इसी अक्सर तब्दीली के तहत भारतीय रेलवे ने पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप मुतारिफ कराया था। यह ऐप तेजी के साथ मुसाफिरों में मकबूल हो रहा है और मुल्क भर में इसे रिकॉर्ड 3,50,00,000 अफराद ने डाउनलोड किया है। अब यह ऐप टिकट कंफर्मेशन के एआई पर मबनी इम्कान भी फ्राहम कर रहा है। इस सहूलत को इस साल के अवाइल में मुतारिफ कराया गया था और इसे बड़े पैमाने पर सारिफिन ने पसंद किया है। रेलवे के मुताबिक वेट लिस्ट कंफर्मेशन की पेशगोई की दुरुस्तगी पहले के 53% से बढ़कर अब 94% हो गई है। अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम उन लाखों मुसाफिरों को सहूलत दस्तयाब करेगा जो भारतीय रेलवे के जरिए सफर करते हैं। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: इंडिया एआई और तिब्बी तहकीक के भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने आज नई दिल्ली में सेहत के शोबे में जिम्मेदाराना मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए एक मुफावतनामे पर दस्तखत किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि यह शराकतदारी मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना और वसीतर इस्तेमाल से सेहत के शोबे में अच्छे नतायज की जानिब एक अहम कदम है। वजारत ने मजीद कहा कि इस मुआहदे के तहत बाहमी ताउन के लिए एक मुनज्जम फ्रेमवर्क कायम किया गया है जिसमें इंडिया एआई के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इको निजाम की सलाहियतों को आईसीएमआर की हयातियाती तिब्बी तहकीक और सेहत आम्मा के शोबे में महारत के साथ यकजा किया जाएगा। वियतनाम के सदर टो लाम ने जोर देकर कहा कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के लिए अहम मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लाम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने माजी में बाहमी इश्तराक व ताउन के जरिए बहुत से चैलेंजों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों बिलखसूस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने वाली कंपनियों को वियतनाम में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वसी ताल्लुकात को उजागर करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी एतमाद के सबब 2016 से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। सदर लाम ने मजीद कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा वाकई चैलेंज से भरा हुआ है, ताहम भारत और वियतनाम के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक ले जाने का भी एक बेहतर मौका है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद, सरमायाकार और पेशावर अफराद एशिया के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे। चीन के शंघाई में आज तीरंदाजी में भारतीय खवातीन रिकर्व टीम ने आलमी कप के दूसरे मरहले के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की 10 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम

पर शानदार जीत हासिल करके मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर इतवार को होने वाले सोने के तमगे के मुकाबले के लिए जगह बना ली। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी खबरें मिलने तक 14 ओवर्स में एक विकेट पर 139 रन बना लिए थे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को

0: एस बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी खबरें मिलने तक 14 ओवर्स में एक विकेट पर 139 रन बना लिए थे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगा, जो 40 साल कदीम प्लेटफॉर्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्वनी वैश्यो ने हुक्काम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वियतनाम के सर टोलाम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाएं? सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी है, इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है, उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो हैं, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी, उनको ये प्रावधान है एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है

0: उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है। और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा।
1: जी, और एक बहुत बड़ी राहत होगी खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
0: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है। और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं, 7 करोड़ कंपनियां जो हैं, उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल की मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी, इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा।
1: जी
0: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है, खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा। और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा, 2 साल का मॉरेटोरियम ये विमानन कंपनी की होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है। तो
1: जी
0: मैं समझता हूं कि इतने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है, इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की, निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
1: जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य जी, कि जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन, समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को लिए इस कर्ज के दौरान?
0: देखिए, मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है, जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम है, उसका मतलब 1 साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वो वापस ना कर सके ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है। तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए आप,
1: जी
0: उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। मैं
1: बिल्कुल
0: समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच

0: है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट्स बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है?
0: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी ATF की प्राइस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है,
1: बिल्कुल
0: और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को, ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है, एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी।
1: बिल्कुल
0: हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खास तौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए, ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो MSME सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग हैं, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही MSME कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेंगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा,
1: जी
0: पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना, उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है। और इसी

0: आइए सुनते हैं कवि गोष्ठी।
1: राधे राधे। आकाशवाणी आगरा के सभी सुधी श्रोताओं को भूमिका जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है जिसका नाम है ब्रिज काव्य मंजूषा। इससे पहले कि हम ये काव्य गोष्ठी प्रारंभ करें, हम आपको ब्रिज भाषा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं। ब्रिज भाषा मूलतः ब्रिज क्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रिज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रज भाषा के नाम से जानी जाने लगी। शुद्ध रूप में यह आज भी मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्तिकाल के कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी लाल, केशव, घनानंद आदि प्रमुख कवि हैं। हिंदी फिल्मों और हिंदी फिल्मी गीतों में भी ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में देखा जाता है। आधुनिक ब्रज भाषा 1,23,00,000 जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग 38,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई है। तो ऐसी मधुर, मीठी और वात्सल्य भरी भाषा में आज हम आपको कुछ सुंदर सुंदर कविताएं सुनवाएंगे। उसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 ब्रजभाषी वरिष्ठ कवियों को, जिनमें सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगी ब्रजभाषी कवि श्री बदन सिंह मस्ताना जी का। मस्ताना जी मूलतः भोगांव मैनपुरी से आते हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें बाल कविता संग्रह हैं, कुछ ब्रजभाषा के काव्य संग्रह हैं, कुछ कड़ी खड़ी बोली के भी संग्रह हैं। और इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं कविवर शिव सागर शर्मा जी। आप भी ब्रजभाषा के मूलतः कवि हैं और आपने गीत, गजल, छंद, सवैये, लोकगीत, मुक्तक, छंद, कहानी, निबंध, लेखन, लेख इत्यादि सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। और सबसे अंत में मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर राधेश्याम मिश्र का। आप झकरई अलीगंज एटा जिले से आते हैं। आप भी मूलतः ब्रजभाषा के कवि हैं। आपके गीत संग्रह भी, जिसका नाम है जिंदगी चलती डगर है, प्रकाशित है। ब्रजभाषा छंद संग्रह भी आपके प्रकाशित हैं। खड़ी बोली के छंद संग्रह और मुक्तक संग्रह भी आपके प्रकाशित हैं। तो श्रोताओं, बहुत देर ना करते हुए मैं सीधे सीधे निवेदन करना चाहूंगी श्री बदन सिंह मस्ताना जी से कि वे हमारे मध्य आए और अपनी काव्य रस की बौछार यहाँ करें। आपके बीच उपस्थित हैं श्री बदन सिंह मस्ताना जी।
2: स्वागत। मैं शारदीय स्तवन से इस गोष्ठी का आरम्भ करता हूं।

देबो बिहारी सालों ना दुलार दे और बड़ी कोहू साधु नहीं बस नेक लला कही मोही पुकार दे। और एक क्षण ब्रजभाषा पे देखें, जो ब्रजभाषा का किस तरह जन्म हुआ है कि मन मोहन के मुख सोनी कसी मानो मुक्ति पिठारी लगे ब्रज भाषा। चहु धामन में जाकी ज्योति जगे अरु गारियों में प्यारी लगे ब्रज भाषा।

तरसे सुर जाही अलापन को इतनी रत नारी लगे ब्रज भाषा विधि रस चाखत बौरो भयो तिहु लोक त्यारी लगे ब्रज भाषा।

0: मिश्री दधि की सो निहारत है। संत सती आरु धेनु के वृंदन पैमन आपन भारत है। सोबत जागत आठहु याम सो राधे ही राधे पुकारत है। राधे ही राधे पुकारत है। एक संदर्भ देखे ब्रजभाषा का कि ढीठ बड़ो जसुदा को लला भरी भीरु में नैन लड़ावत है। ढीठ बड़ो जसुदा को लला भरी भीरु में नैन लड़ावत है। ओ आली कहूं किन सोमन की मोपे सांबरो रंग चढ़ावत है। हों कहे हारी बेथासी गसों पर कौन धीर बंधावत है। और जाने कौन सी वो चट सारो पढ़ो सब उल्टो पहाड़ो पढ़ावत है। सब उल्टो पहाड़ो पढ़ावत है। और फिर एक गोपियों की ओर से संकेत दिया जा रहा है कि जा दिन हाथ में ए हो लला तुम ता दिन हो कर हो मन मानी। जा दिन हाथ में ए हो लला तुम ता दिन हो कर हो मन मानी। और खूब ठिठोली हमारी करो तुम का करे हो सुच चित्त की हानि। है पर अतीत हमें अपने पर देत मिठास न आस बिरानी। और दारी गलेगी किसी की कहा जब छानी के पीना पड़ी हम पानी। दारी गलेगी किसी की कहा जब छानी के पीना पड़ी हम पानी। एक क्षण कवित्व के माध्यम से कि मानुष को जन्म मिलो कितनो भयो है भलो पाप के पहाड़न सुको सो दूर रहिए। मानुष को जन्म मिलो कितनो भयो है भलो पाप के पहाड़न सुको सो दूर रहिए। और सूर रस खान भोरी मीरा सा ममीरा आज ऋषि मुनि ज्ञानियों सिनी की गैल गहिए। अगले जन्म के सुधार को सपन सोधि भले चाही अन चाही लाभ हानि सहिए। और किंतु मति राम देव जाई सी बिहारी बन आठो याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए।
1: बहुत सुंदर बाबा
0: राधे कृष्ण कहिए। और एक छंद और देखें कि नंद के लला ने जहाँ गाँव में है चराई नित कानन में कुंजन में भरी पद चाप है। गेह गेह माखन चुरायो छड़ी छिकिन सो गोपिन सो नेह की अमित छोड़ी छाप है। बांसुरी बजा के तीनों लोक किए मोहित हैं। मानुष सदृश की ये क्रिया कलाप है। ऐसी ब्रज रज जाके माथे सो छुअत ताके जन्म जन्म के दुरत सिग पाप
2: है।
0: जन्म जन्म के दुरत सिग पाप है। और एक छंद देखें कि ब्रज की लुनाई की बड़ाई हो कहाँ लो करो जहाँ जन्म लेने ललचात सुर राज है। ग्वाल और गोपिन की भोरी भोरी बातन में मानो तीनों लोक के अमाय स्वर साज हैं। बछरा रंभात कहो मुरली की तानन सो चाहतों के चित्त को चुरात ब्रज राज हैं। आज हूँ लगत जैसे जमुना कछारन में कन कन में मिलत मुक्ति पुखराज हैं। कन कन में मिलत मुक्ति पुखराज हैं।
2: बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है।
0: एक क्षण सूरदास जी पर जिन्होंने ये ब्रजभाषा के लिए लिखा है कि भिन्न भिन्न किब दंतियां ये बतलाती हमें भली भांति सूर ने ही श्याम को निहारा था। भिन्न भिन्न किब दंतियां ये बतलाती हमें भली भांति सूर ने ही श्याम को निहारा था। दाम जाने कौन से कसूर में हुए थे सूर स्वयं मन मानक क्यों बांसुरी पे वारा था। किस लिए दुनिया से इतनी घृणा हुई कि जिसको कि देखने से भी किया किनारा था। मेरी तो समझ में है आता इतना ही बस भक्त की प्रगाढ़ता को प्राप्त से असारा था।
2: क्या
0: भक्त की प्रगाढ़ता को प्राप्त से असारा था। और एक गीत के माध्यम से और देखें ब्रजमंडल सो लगे सलोनो

काऊ पात पात को रूप सलोनो मन पे जादू डारे बोरी बोरी कुंजन की शोभा बरनत स्वर हारे।

0: कहूँ गिरिराज उठाए के पुलके, काली देह में थिरके, मोहक रास रचाए थमावे, आत्म सुख को पाऊं। ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न को उठाऊं। अगला पन देखें कि मीरा पकरी मजीरा हेरे अपनो एक सहारो, मीरा पकरी मजीरा हेरे अपनो एक सहारो, सूरदास को चंद खिलौना अचरज छोरे न्यारो।
1: बहुत अच्छा।
0: देव बिहारी घनानंद हेरे मति राम की अखिया, सेनापति बोधा की बानी भौतारन की नाव, ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और नको उठाऊं।
1: क्या सुंदर, बहुत अच्छा।
0: अगला बन देखें कि मुक्ति की मिसरी घोरो पियत ही ब्रज मंडल को पानी, मुक्ति की मिसरी घोरो पियत ही ब्रज मंडल को पानी, अहो भाग्य अपनो मानत है सचराचर की बानी, वेद पुराण नहुने ब्रज रज महिमा थोरी गाई, वेद पुराण नहुने ब्रज रज महिमा थोरी गाई, जाके माथे छुअत लगत रस खान बनन को दां, ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न को उठाऊं।
1: ये ब्रज भाषा की मिठास है, ये ब्रज भाषा की मिसरी जैसी जो इसकी खूबसूरती है, ये सब आप लोग सुन रहे हैं आदरणीय बदन सिंह मस्ताना जी के द्वारा। और ब्रज में मूलत है राधा और कृष्ण के प्रेम को ज्यादा गाया गया है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम को गाते हुए रसखान जी क्या कहते हैं देखिएगा, कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर गावे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुन पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छा छुपे नाच नचावे। ये ब्रज की माधुरी है। और मैं इसी छंद के साथ एक और बड़े रचनाकार को आपके बीच प्रस्तुत करती हूँ, जो हमारे बीच अलीगंज एटा से उपस्थित हैं, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र। उनका परिचय मैं आपको दे चुकी हूँ, अब उनके गीत उनके छंद उनका परिचय देंगे। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर राधेश्याम मिश्र का।
2: श्रीमती भूमिका जैन जी ने कहा कि ब्रजभाषा में ज्यादातर राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार में छंद लिखे गए हैं, उसी परिपाटी में हमने भी नायक नायिका के माध्यम से कुछ छंद लिखे हैं। उन छंदों से कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सुने। गंध सुगंध स्नेह सनी कजरारी लटे बिखरावती हो, मुस्कावती हो इठलावती हो, पिक बैनी से बोल सुनावती हो, निज रूप पिया मन भावन को, निज रूप पिया मन भावन को, बहु रूप स्वरूप बनावती हो, अपनो ही और न भाए बेकू हसनैनन कोर चलावती हो, अपनो ही और न भाए बेकू हस नैनन कोर चलावती हो। और छंद देखें कि तुम एक बार

मधु दीठी सो दीठी चुरावती हो, मन ही मन में जब चाहती हो, तन सो के हो नेह दुरावती हो, मन ही मन में।

दूरा बत्ती हो। और एक छंद आगे देखे, एक नायिका इतनी सुंदर है कि देखत दीठ दुरे न दुरे अनुहारत ही छलकी अखिया, देखत दीठ दुरे न दुरे अनुहारत ही छलकी अखिया, और बहु तेरे चितेरन हो सुड़ो लखनेह भरी जलकी अखिया, मन मोहिनी मूरत सूरत सो, मन मोहिनी मूरत सूरत सो, मिले बेकू सब फड़की अखिया, और यौवन की बगिया महकी चहकी बहकी सबकी अखिया, और यौवन की बगिया महकी चहकी बहकी सबकी अखिया। और आगे देखें, एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि भूलो भई

चाही लियो ठगिनी और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई ही यो ठगिनी और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई ही यो ठगिनी। और एक क्षण और देखें, इसमें एक नायिका अपने नायक के आने की प्रतीक्षा करती है कि उठती ही लोर ही ये मिले बेकू आस पिए है।

ही मिले बेकू आस पिय हेरे हेरे पथ कुंध मैली भई अखिया और नित नित नैन नसो बर सत मेह नेह कर याद रोई के सुजैली भई अखिया और झरी झरी गिरी तींद्रगन सो बरौनी भूमि झरी झरी गिरी तींद्रगन सो बरौनी भूमि जैसे बिन काहू के रुगैली भई अखिया और होले होले जिय में बड़ा तिबी रहा किया गे मन पछताई के दुखैली भई अखिया होले होले जिय में बड़ा तिबी रहा किया गे मन पछताई के बिखैली भई अखिया। और एक छंद और देखें कि गोरी अबे न चलो वृंदावन भोरी तुम्हारी लगे मन मूर्ति और संत मनीषी महा मुनि ज्ञान न देखत दीठ ठगे मन मूर्ति कि बारी न बैस तुम्हारी रही कि बारी न बैस तुम्हारी रही लख और न काहू रंगे मन मूर्ति और याते लली चुप ही घर बैठी ये रूप की ज्वाल जगे मन मूर्ति याते लली याते सखी चुप ही घर बैठिए काम की ज्वाल जगे मन मूर्ति। और दो छंद और देख लें राधा कृष्ण के माध्यम से। इसमें कृष्ण क्या कहते राधा से या एक नायक क्या कहता अपनी नायिका से कि कौन घरी तुम्हें एरी लली जब कौन घरी तुम्हें एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोवन आए हो कि कौन घरी तुम्हें एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोवन आए हो और बिछुरी अब की कित ठोर मिलो कब प्रेम की बात संजोवन आए हो रूप की आगरे प्रेम की गागरे रूप की आगरे प्रेम की गागरे कौन समय रस छोरन आए हो रूप की आगरे प्रेम की गागरे कौन समय रस छोरन आए हो मुख चूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कब मन मोहन आए हो मुख चूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कब मन मोहन आए हो। और एक छंद और देख ले अंत में इसमें राधा क्या कहती कृष्ण से सुने कि आए गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगई हो कि नहीं कि आए गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगई हो कि नहीं आए गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगई हो कि नहीं कि आ तो रहे अखियां मिले बेकू उन्हें तुम आए मिले हो कि नहीं बैठिए नेह की बारी लिए बैठिए नेह की बारी लिए भरी अंक में संग सुलय हो कि नहीं और प्रेम पगीरस भी नी सनी फिर आए के बंसी बजे हो कि नहीं और प्रेम पगी

0: बंसी बजाई हो कि नहीं।
1: बहुत
2: बहुत सुंदर
1: सुंदर छंदों से माध्यम से आपने अपनी बात कही। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रज की खूबसूरती ही है, ब्रज की मिठास ही है कि उसमें जो भी उस भाषा में जो भी काव्य रच दिया जाता है, एक तो उस भाषा का लावण्य, दूसरा भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का अपना उसका उसकी अपनी मधुरता, उन दोनों का जब समावेश होता है तो ऐसे छंद, ऐसी भाषा और इस तरीके का काव्य उत्पन्न होता है। महाकवि रसखान इस धरती पर जन्म लेने की इच्छा करते हुए भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, उनका लिखा हुआ एक छंद प्रस्तुत करते हुए हम आदरणीय शिव सागर शर्मा जी को आवाज देते हैं। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन।
0: वो
1: ऐसी इच्छा रखते हैं और देखते हैं आगे शिव सागर शर्मा जी क्या कहते हैं अपनी इस ब्रज भाषा में और किस तरह के गीत छंद वो हमें सुनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए और अपनी कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत कीजिए।
3: योग पे कुछ छंद सुनाए रहो। ये योग क्या है? ये व्याप

ओ सत चित्त आनंद को धाम है विराट विभु, चित्त को अचित्त करे वे को नाम जोग है। सत चित्त आनंद को धाम है विराट विभु, चित्त को अचित्त करे वे को नाम जोग है। अपने स्व

0: जोगत सो नित्य झारे वे को नाम जोग है।
1: कमाल है चीनी, वाह।
0: और जोग पे का है, गुरु अनुशासन को माने वे को कहे जोग, चित्त व्रत रुद्ध करे वे को नाम जोग है। समदम जप तप नियम अहिंसा आदि साधन सो शुद्ध करे वे को नाम जोग है। ईश प्रणिधानम तपस्या अरु स्वाध्याय क्रिया जोग के विचार वे को नाम जोग है। ओ यम ते समाधि तक जाए वे को नाम जोग, सांसने में प्राण साधे वे को नाम जोग है। एक छंद और है, रोग ते निवृत्त करे भोग ते विरक्त करे जोग में प्रवृत्त करे वे को नाम जोग है। ओ मन को विराम दे आत्मा को राम दे, चित्त को समन करे वे को नाम जोग है। सत्य को प्राकट्य करे झूठ को न साथ धरे, सडर पुते न हार वे को नाम जोग है। सत्य को प्राकट्य करे झूठ को न साथ धरे, सडर पुते न हार वे को नाम जोग है। आत्म अनुभूति को कहे हैं जोग विज्ञ लोग, नाम जप भवित भव तारे वे को नाम जोग है। ये तो जोग पे कुछ छंद है। अब एक लोकगीत सुनाए रहा हूं, जाको शीर्षक है कजरा, है ना। काजर को अपनो कोई रूप तो उतना कारो हो तो, लेकिन आंखने में अच्छा लगता है। तो मैंने निवेदन किया है, एक कजरारी अखियां पाए घनोई तरावे कजरा, कजरारी अखियां पाए घनोई तरावे कजरा, कजराते कछु न बस्याय सवने कु बिरावे कजरा, कजरारी अखियां पाय। पंक्तियां हैं कि दृग की सुंदरता

कजरारी अखियां पाए घनोई तरावे कजरा कजराते कछु न बस्याए।

और जो पढ़े लिखे लोग हों बिने ये कजरा पढ़ाई दे कैसे देखो कारिख पोते उंगरियन में मन अखियन में बस जावे कारिख पोते उंगरियन में मन अखियन में बस जावे ओ प्या देते फर्जी भयो यासों।

वो जो वीर लोग हों बिनेऊ जी हराए दे कजरा। भौहन मिल्यो कमान बन्यो है निज कर छाप चढ़ावे, और रिप प्रेमी को भेदन जाने तक

0: बस यार आखिरी पंक्तियां हैं। अब जैसे जाड़े हैं लेकिन काजल जाड़े में भी नहाता है, बहुत से लोग नहीं नहाते, काजल नहातू कैसे? कबहुक द्रगनन कौर जावे, कबहुक नजर चुरावे,
1: वाह।
0: कबहुक द्रग

0: आज संचालन कर रही हैं डॉक्टर भूमिका जैन, बहुत अच्छी कवित्री हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ब्रजभाषा में वो अपना काव्य पाठ करें।
1: जी बहुत बहुत आभार दादा। मैं दो तीन छंद मैंने बहुत कोशिश की है लिखने की, आप सबके मध्य लिखना और पढ़ना एक ने आप में बड़ी बात है। मैं प्रस्तुत करती हूँ, देखिएगा। मोह ऐसो मोहना को मन में समाये गयो, मोहनी सी देखो भई जाए रही राधिका, कान्हा के अधर देख बांसुरी धरी तो हाय, जरी जरी राख भई जाए रही राधिका। और सोच रही कान्हा जो अधर मोहे धरी ले तो, लाज सो दुहेरी भई जाए रही राधिका। उठे उर में हिलोर काहू पे चले न जोर, तासो अपने को समझाए रही राधिका। उठे उर में हिलोर काहू पे चले न जोर, तासो अपने को समझाए रही राधिका। और एक क्षण देखिएगा कि नैनन सो बैनन सो तीर से चलाए, और अंगुरी पे चुनरी लपेट रही राधिका। नैनन सो बैनन सो तीर से चलाए, और अंगुरी पे चुनरी लपेट रही राधिका। बोलवे को होठ जो हिलाए अकुलाए मन, मंद मुस्कान में समेट रही राधिका। ओ पटक पटक पाए दे रही इशारे श्याम, कौले कौले कोर कर भेंट रही राधिका। ओ कनखी से श्याम को निहारत निहार लियो, श्याम की चतुराई मेट रही राधिका। कनखी सो श्याम को निहारत निहार लियो, श्याम की चतुराई मेट रही राधिका। और एक क्षण देखिएगा कि माखन

0: जोर रही भई उबर सी दृग कोर सखीरी और गूंथत गूंथत भूल गई कित और गयो लट छोर सखीरी। गूंथत गूंथत भूल गई कित और गयो लट छोर सखीरी। तो ये तो कुछ छंद थे और इसी छंद के साथ मैं आज की इस अति महनीय गोष्ठी जिसका नाम था ब्रज काव्य मंजूषा इसका समापन करती हूँ और बहुत मन से पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आदरणीय शिवसागर शर्मा जी का, आदरणीय बदन सिंह मस्ताना जी का और आदरणीय राधेशा मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सभी सुधी श्रोताओं का जिन्होंने हमारे बीच इस काव्य गोष्ठी को सुना। और आपको ये काव्य गोष्ठी कैसी लगी ये हमें अपने पत्रों के और दूरभाष के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद आमिर खान से सबसे पहले राग नंद।